0: ദിശ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ ടെലിലോ ന്യായ് ബന്ധു നിയമസാക്ഷരതാ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളിൽ പങ്കാളികളാകും. നിയമസഹായത്തിനായി ടെലിലോ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ 1444 www.tele-law.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലോ ബന്ധപ്പെടുക.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश.
2: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है.
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई

0: लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: You are listening to Rainbow FM Kochi 107.5. Musically yours.

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।

सुरक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: Musically yours, this is FM Rainbow 107.5.
3: Your favorite music station.

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: मौनम परमा।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है तुम पढ़ो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: സൗജന്യ നിയമ സഹായത്തിനായി ടെലിലോ ആപ്പ് www.tele-law.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 14454 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश.
2: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए. और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है, तुम पढ़ो.
1: परीक्षा से जुड़े किसी

0: भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
1: Musically yours, this is FM Rainbow 107.5.
2: Your favorite music station.
0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: PM സൂര്യാഘർ മുഫ്ത് ബിജ്ലി യോജനയിൽ ചേരുന്നതിനായി ഇന്ന് തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ. PM suryaghar.gov.in.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश.
2: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी.
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे. अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें.

0: आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: Mr. Modi highlighted that the world is eager to be a part of India's growth journey. The Prime Minister said that the country is also partnering with various countries of the world aimed at providing opportunities, employment and global exposure to the youth of the nation.
0: Duniya Bharat ke yuvaon aur Bharat ki technological progress ko lekar bahut utsahit hai. Aaj duniya भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: आकाशवाणी FM रेनबो
0: 107.5। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: Rainbow FM presents Triple Treat. Three songs back to back. Enjoy the tracks and stay tuned. 3, 2, 1, let's go! Triple Treat.

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व।

जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी तो शुरू करते हैं आज का ये सफर आपके मनपसंद गीतों का। तो पहला गीत सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता हैं ये। कहाँ से लिखा है आपने? आपने लिखा है गांव जाखोद राजस्थान से, पूजा खटक, बिमला देवी, शंभुदयाल खटक ने। और इसी ये खत हमें मिला है कुंडलेश्वर वार्ड।

वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा गुजराती, और ये खत हमें मिला है बीकानेर से और राजस्थान से। अच्छा, आप राजस्थान के थे श्रोता, जिनका नाम हमने पढ़ दिया है। आप है चेतक सर्कल उदयपुर से मुकेश जीनगर, रेणु जीनगर, अजय, प्रिंस और कुलदीप। आप सभी सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाज मोहम्मद रफी की, और फिल्म का नाम है जीने की राह।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अनामिका से। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन। इस गीत को सुनने की आप सभी ख्वाहिशमंद हैं। आप हैं कोल्हापुर से सतीश वाघमारे, आतिश वाघमारे, स्वाति, वर्षा वाघमारे, श्रमण वाघमारे, श्रमेण वाघमारे। अच्छा, आपने चंदन नगर सातारा से ये खत लिखा है। और उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर, चेतन शामतकर ने खत लिखा है हमें। आप हैं पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और अलीना मंसूरी। नंदग्राम गाजियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना आनंद, खुशी आनंद। और गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार और मास्टर मनीष। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म अनामिका में।

0: लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म अनामिका में। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। आप हैं पलसीकर कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई, राकेश मटाई, उमेश, जिम्मी, अमिता, हनी, दियाना, जियांश मटाई, करनाल हरियाणा से गुरविंदर सिंह पांधा, मनविंदर सिंह पांधा, और ये खत आया है हैदराबाद से कनुगुला गोपाल, महेश्वरी, प्रावलिका, विष्णुवर्धन और विघ्नेश का। हम आप सभी से ये अनुरोध भी करते हैं कि कृपया अपने नाम थोड़ा सा साफ सुथरा लिखें ताकि हमें पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और हम आपके नामों का उच्चारण सही ढंग से कर पाएं। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म लैला मजनू का गीत। गीतकार साहिर लुधियानवी हैं और संगीतकार मदन मोहन हैं।
1: तेरे दर पे आया हूँ।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, अनजान के बोल, लता मंगेशकर की आवाज़ है और फिल्म का नाम है अपने रंग हजार। सुनने वाले हमारे श्रोता हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर दुर्ग से, आप हैं छत्तीसगढ़ से अनंत जैन, हंसित जैन, प्रीति जैन, और छत्तीसगढ़ से ही हैं देवरी भटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर एस, अश्विनी कुमार और गणेश राम। लीजिए आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर। आप हैं लिखने वाले गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोधले, आरती जोधले और इनके परिवार वाले। ये खत हमें मिला है छत्तीसगढ़ से, जिला धमतरी से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम सावित्री साहू। यानी ये खत है इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से। हमें उम्मीद है आपने अपना नाम सुन लिया होगा। और ये खत मिला है गाजियाबाद से, नंदग्राम गाजियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना आनंद, खुशी आनंद का। और वनुजा तांडा से सानिका राठौड़, एस आर टेलर, जय राठौड़, सुनील राठौड़, इंदुबाई राठौड़ और कुमार आशीष का। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोंसले को फिल्म परवाना में। गीत को कैफी आजमी ने लिखा है और संगीत मदन मोहन का है।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अमर प्रेम का गीत, आवाज किशोर कुमार की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने। इस गीत को सुनने के लिए आपने हमें खत लिखे। आप हैं बोडूसरा नेला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु साहू। और ये खत आया है खमहरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रदीप कुमार का। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: किशोर कुमार की गाय फिल्म अमर प्रेम के इस गीत के साथ ही आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
1: मनचाहे गीत।
2: मनचाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: रवि शर्मा लिखित नाटक सुनिए विजयमाल।
1: सब यथास्थान विराजें, कार्यवाही आरंभ की जाए।
2: जो आज्ञा महाराज। महाराणा की जय। राणा हाड़ा जी का विशेष दूत एक संदेश लेकर आया है और दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है।
1: आने दिया जाए।
3: महाराणा की जय।
4: राणा हाड़ा जी ने यह पत्र आपकी सेवा में प्रेषित किया है।
1: मंत्री जी,
2: अन्नदाता,
1: पत्र का भावार्थ व्यक्त कीजिए।
2: अन्नदाता, राणा हाड़ा जी अपनी अतीत सुंदरी कन्या का विवाह हमारे वीर सामंत चूड़ावत से करना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए आपकी अनुमति मांगी है।
1: यदि चूड़ावत जी को यह प्रस्ताव स्वीकार है तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है?
2: महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं इस विषय में कुछ निवेदन करूं।
1: आज्ञा है मंत्री जी, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं।
2: महाराज, सरदार चूड़ावत हमारे वीर सेनापति हैं। राणा हाड़ा ने उन्हें अपनी सुंदरी कन्या के लिए मांगकर बुद्धिमता का परिचय दिया है। पर मेरी सम्मति में तो वीर चूड़ावत की जीवन संगनी कोई वीर कन्या ही हो सकती है, हाड़ी कुमारी नहीं।
1: महामंत्री जी, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हाड़ी कुमारी छत्राणी नहीं है? क्या उसकी रगों में पूर्वजों का रक्त प्रवाहित नहीं हो रहा?
2: महाराज,
1: हम आपकी शंका का कारण समझने में असमर्थ हैं।
2: महाराज, जहां तक मुझे ज्ञात है, हाड़ी कुमारी में वीरोचित गुणों का अभाव है। सामंत चूड़ावत का बचपन तो तलवारों की खनखनाहट में पला है और यौवन युद्ध क्षेत्र में पल्लवित हुआ है। कहीं ऐसा न हो कि हमारे इस उगते हुए सूर्य को ग्रहण लग जाए। विद्वानों ने कहा भी है, भार्या रूपवती शत्रु, यूं भी नारी का रूप और यौवन पुरुष की सबसे बड़ी दुर्बलता है। जानबूझकर इस दुर्बलता को गले की माला बनाने की सलाह मैं नहीं दे सकता।
1: चूड़ावत जी।
5: महाराणा,
1: आपकी इस विषय में क्या सम्मति है? क्योंकि वीर राजपूत केवल अपने ही विचारों और अपने ही भुजबल के विश्वास पर आगे बढ़ता है, इसलिए निसंकोच आप अपने विचार व्यक्त कीजिए।
5: महाराणा, हाड़ी कुमारी के अद्भुत रूप और लावण्य की चर्चा सुनकर भी मैंने कभी भावुकता का आश्रय नहीं लिया, पर मैं इतना अवश्य कहूंगा कि रूपवती भार्या को चाहे शत्रु कहा जाए अथवा उसे पुरुष की दुर्बलता की संज्ञा दी जाए, पर इन सब के साथ साथ वो पुरुष के जीवन की एक महान प्रेरणादायक शक्ति भी है। वह शक्ति जिसके अभाव में शिव भी शव के समान हो जाता है। आज एक नारी के सौंदर्य ने मेरी वीरता और पुरुषत्व को चुनौती दी है। यदि महाराणा की आज्ञा हो तो स्वीकार कर लूं इस चुनौती को।
1: हम आपको यह चुनौती स्वीकार करने की अनुमति देते हैं। मलखान सिंह
6: जी। महाराज,
1: राणा हाड़ा को यह शुभ संदेश दे दो कि हमें ये संबंध स्वीकार है। महामंत्री जी।
2: जी महाराणा।
1: सामंत चूड़ावत के विवाह का आयोजन राजकीय सम्मान से अति शीघ्र।

0: भैया भाभी बहुत ही सुंदर हैं।
1: सच
0: सच भैया, देखोगे तो पागल हो जाओगी।
1: तनिक अपनी भाभी को हमें भी तो दिखा दो।
0: इतने उतावले क्यों हो रहे हो, थोड़ी देर और ठहर जाओ ना। और हाँ, मेरी मुंह दिखलावनी।
1: ये लो।
0: कितनी अच्छी है ये माला।
1: अब बोल, कहाँ है तेरी भाभी?
0: अरे तारा, कहाँ चली गई? सब भाभी को ही घेर कर बैठी हैं।
1: अच्छा,
0: कोई सुनता ही नहीं। तारा, तारा
2: आई।
0: देख तारा, जरा भैया को ऊपर वाले कमरे का रास्ता दिखा देना, बेचारे थक गए हैं।
2: आइए सामंत, ऊपर जाकर विश्राम कीजिए और प्रतीक्षा भी।
1: प्रतीक्षा? प्रतीक्षा किसकी?
2: चंद्रोदय की। आज आपके शयन कक्ष में पूर्ण चंद्र का आगमन जो होने वाला है।
1: ओ, अब समझा, तुम बहुत नटखट हो।
0: आओ भाभी, इधर आओ, यहाँ बैठो। हाँ, ऐसे
3: यहाँ। यहाँ क्या करना होगा मुझे?
0: ये हमारी कुल देवी हैं, सौभाग्य और यश की देवी।
3: अच्छा,
0: नववधु इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर ही पति के दर्शन कर सकती है। आज के दिन वधु जो कुछ इनसे मांगती है वो उसे अवश्य मिलता है।
3: अच्छा
0: भाभी, मांगो जो भी इच्छा हो।
3: मैं केवल यही मांगती हूँ कि मेरे पति पर कभी भी किसी भी प्रकार का कलंक न लगे, यश और सौभाग्य की वर्षा होती रहे उन पर।
0: धन्य हो भाभी, तुमने वही मांगा जो मांगना चाहिए था।
3: इसके सिवा और मैं मांग ही क्या सकती थी?
0: भाभी, तुम्हारे ये विचार तुम्हारी सुंदरता में चार चांद लगा देती हैं। और हाँ भाभी, अब रात अधिक हो रही है, हम सब तो आज रत जगा करेंगी। तुम ऊपर जाओ, आज तुम्हारी मधु यामिनी है ना?
3: ना ना, मैं भी तुम लोगों के साथ रत जगा करूंगी।
0: रत जगा तो करोगी ही, पर ऊपर, यहाँ नहीं। भाभी शर्माओ नहीं, ऊपर जाओ। नहीं जाती? अच्छा ठहरू, मैं भैया को बुलाती हूँ, तुम्हें गोद में उठा कर ले जाएंगे। हाँ,
3: अरे अरे,
0: बुलाओ भैया।
3: मैं जाती हूँ।
0: तारा सुन
3: जी,
0: भैया ऊपर के कमरे में ही है ना?
3: जी हाँ, सामंत तो वहाँ पहले से ही हाड़ी रानी की प्रतीक्षा में बैठे हैं।
0: बस अब खूब मजा आएगा।
3: कितना सुंदर कक्ष है ये। पलंग, गुलाब की पंखुड़ियाँ, फूलों के पर्दे और ये तलवार अवश्य मेरे स्वामी की है। और वो चित्र किसका है? ओह स्वामी, प्रियतम, कितना तेजस्वी मुख है। आज मेरी चिर संचित अभिलाषा पूर्ण हुई। अब मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे। जब तुम सामने आओगे तब तो शायद लज्जा के मारे में कुछ बोल भी नहीं सकते। कौन?
1: स्वागत है।
3: ओह, आप यहाँ?
1: हाँ प्रिय, मैं यहाँ कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। पर ये घूंघट किस लिए? मैंने तो तुम्हारे रूप की एक झलक भर देखी है, हृदय नहीं भरा।

0: तो मैं ही इस चंद्रमुख पर से इन घूंघट रूपी बादलों को हटाए देता हूँ। ऐसे
1: ना, हाँ, ना, ना।
0: अब ठीक है। हाँ, देख रहा हूँ रूप का सागर, विधाता के हाथों खड़ी हुई सौंदर्य की प्रतिमा, पवित्रता और कोमलता की प्रत्यक्ष देवी मीनाक्षी, सुहाग बिंदिया और शशि मुख पर ये मोती की नथ, मानो साक्षात भगवती का ही पदार्पण हुआ है मेरे घर में। मेरा अपनापन, मेरा व्यक्तित्व जैसे तुम में विलीन होता जा रहा है। मैं नहीं हूं, मैं और तुम।
1: स्वामी, मेरे देवता।
0: सच,
1: मैं तुम्हारी पुजार।
2: सभी प्रजाजनों को सूचित किया जाता है,
0: तुम सच मुगल बादशाह सुंदर हो,
2: नगर की राजकुमारी
0: चंद्रमुखी पागल चकोर, ये चाहता है कि एक तक तुम्हें देखता ही रहूं।
2: नगर के राजा ने
1: स्वामी
2: हमारे महाराणा से
1: इस पागलपन
2: सहायता की
0: रानी,
1: और सुनिए
0: रानी प्रिय, तुम कुछ कहती जाओ और मैं सुनता रहूं। मेरी रानी, मैं तुम्हारे सौंदर्य सागर के यौवन रूपी भंवर में फंस गया हूं।
1: स्वामी,
0: कमल के कोमल संपुट में बंद भ्रमर की तरह हैरान हूँ, मुक्त हूँ।
1: सुना आपने?
0: इधर
1: स्वामी।
0: प्रिय,
1: छोड़िए, छोड़िए मेरा हाथ।
0: प्रिय, मुझसे क्या अपराध हो गया है जो तुम इतनी प्रसन्न हो और अचानक दूर खड़ी हो गई है?
1: स्वामी, सुनिए नगाड़े की ध्वनि। राजपूत तो इसका मतलब अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए मैं पीछे हट गई।
0: ओह मेरी हाड़ी रानी, मेवाड़ भूमि वीरों से शून्य नहीं है, और फिर मेरे लिए तो राणा जी का विशेष दूत आएगा।
1: जानती हूँ, पर देश की आन पर मर मिटने वाले किसी की प्रतीक्षा नहीं किया करते।
0: प्रियतम, मैं
1: प्रियतम, मेरी प्रार्थना है कि आप किसी की प्रतीक्षा न करें और तुरंत अपने कर्तव्य का पालन करें।
0: प्रिय, जीवन में प्रेम का महत्व किसी भी वस्तु से कम नहीं, कम से कम इस मधु यामिनी को तो बीत जाने दो। विधाता भी कैसा क्रूर है, जीवन के इस मधुर हास्य में कठोरता का अट्ठास और संगीत की मधुर लहरी में ये भयानक चीत्कार जैसा क्षण मेरे ही भाग्य में था। तुम्हें जी भर कर निहार भी न सका, एक बार हृदय से लगा भी न सका, सेज पर सजी हुई गुलाब की पंखुड़ियां भी तुम्हारी प्रतीक्षा में मुरझा जाएंगी।
1: स्वामी, ये केवल आपका मोह और वासना है।
0: रानी,
1: प्रेम प्रेरणा देता है, मोह विचलित करता है।
0: रानी,
1: स्वामी विचलित हो रहे हैं क्योंकि मोह ने प्रेम को बंदी बना रखा है।
0: हाँ रानी, मैं विचलित हो रहा हूँ। मैंने अब तक यौवन के उद्दाम वेग को केवल तलवार की धार पर ही रोक रखा था, पर तुम्हारे रूप और यौवन ने उस वेग को इतना तीव्र कर दिया है कि उसे रोकना असंभव सा हो रहा है। अपने प्राणों को अब तक मैं बर्छों और भालों की नोक पर ही उछालता फिरता था, पर आज जैसी घुटन और उलझन कभी न हुई थी। क्या करूं?
1: तो ठीक है स्वामी, आप चूड़ियां पहनकर यहां बैठिए और मैं सैनिक वेश में युद्ध भूमि में जाती हूँ।
0: रानी ठहरो,
1: आप इस पुष्पशैया पर बैठकर अपनी घुटन का उपचार करिए, मैं आपकी इस कायरता के पाप का प्रायश्चित करने जाती
0: हूँ। ठहरो रानी,
1: यह हरावंश की तलवार है जिसने हर संकट में हमारी रक्षा की है, मैं जाती हूँ।
0: रानी ठहरो।
1: नहीं
0: रानी, सुनो तो।
1: नहीं सामंत, नहीं, मैं जीते जी अपने आप पर यह कलंक नहीं आने दूंगी कि जब सहस्त्रों युवक एक अबला की सतीत्व रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहे थे, उस समय सामंत रंग महल में रंगरेलियां मना रहा था। रूप और यौवन की आंधी में सामंत की वीरता एक तिनके की भांति उड़ गई। अपनी प्रियतमा के केश पुष्पों की सुगंध में मदहोश सामंत तलवारों की खनखनाहट से भयभीत हो गया। नहीं, नहीं सामंत, नहीं, मैं आप पर एक कलंक का टीका नहीं सह।
0: रानी शांत हो और जरा यहाँ बैठो।
1: छोड़िए मुझे,

0: ये तलवार लेकर आलमगीर की सेना पर टूट पड़ूंगी। एक राजपूत बाला के लिए मैं अपने प्राणों की बलि दे दूंगी। कोई पूछेगा तो कह दूंगी कि सामन की वीरता कायरता के बंदी खाने में बड़ी तड़प रही है।
1: नहीं नहीं नहीं, ठहरो रानी, तुम चली जाओगी तो मुझे विदा कौन करेगा?
0: तो फिर शीघ्रता कीजिए स्वामी, आइए मैं आपके भाल पर रक्त तिलक कर दूं। स्वामी विजयी हो और शीघ्र लौटे, यही मेरी शुभकामना है।
1: रण क्षेत्र में भी मैं तुम्हारी मनोहर छवि न भूल सकूंगा। तुम मेरी रग रग में समा गई हो। मैं तुम्हारे इस निर्दोष, अछूते और अतृप्त यौवन को देख रहा हूँ। सोचता हूँ यदि मैं जीवित न लौटा तो तुम्हारा ये रूप, यौवन
0: और... ऐसा न कहिए प्रियतम, यदि कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो ये दासी स्वर्ग में आपके स्वागत के लिए पहले ही उपस्थित हो जाएगी। आप ऐसे विचार हृदय से निकाल दीजिए और निश्चिंत होकर रणभूमि में जाइए।
1: अच्छा प्रिय, विदा। जय भवानी।
0: जय भवानी। विजय प्राप्त कर शीघ्र आइए, मैं विजय मान लिए आपकी प्रतीक्षा करूंगी। भवानी आपको यह

0: कितनी सुंदर है हाड़ी रानी, कितनी मस्ती और अल्हड़पन है उसके अंग संचालन में। पात्र में भरी हुई मदिरा के समान इठलाता हुआ उसका यौवन, जैसे मदिरा की मादकता को भी चुनौती दे रहा हो। एक बार गले से भी न लगा सका, क्या करती होगी इस समय? कदाचित गुलाब की पंखड़ियों से सजी सेज पर बड़ी तड़प रही होगी। अगर मैं जीवित न लौटा तो उसका ये यौवन रूप, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को भेजना ठीक होगा, कुछ निशानी भी मांग लाएगा। रण सिंह उपयुक्त है इस कार्य के लिए, उसी को भेजता हूं।
1: रण सिंह का प्रणाम स्वीकार हो रानी जी।
2: कहिए रण सिंह जी, क्या समाचार लाए हैं?
1: महारानी, सामंत बड़े विफल हैं। उन्होंने मुझे आपके पास कुछ सेनानी लाने भेजा है, साथ ही ये संदेश भी दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर जौहर व्रत करने से आप ना हिचके।
2: ओह, अभी तक प्रियतम का मोह नहीं टूटा। एक क्षत्रानी अपनी मान मर्यादा की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। लीजिए, ये मेरे पितृ कुल की तलवार है। निशानी के रूप में उन्हें ये तलवार देकर कहिएगा कि दोनों वंशों की लाज अब उनके हाथ है।
1: जो आज्ञा।
2: तारा, आज 3 दिन हुए, युद्धस्थल का कोई समाचार नहीं मिला।
3: वह रानी जी, जब रणसिंह आते हैं तब आप क्रोधित उठती हैं, और जब युद्ध का कोई समाचार नहीं मिलता तब व्याकुल होकर रोने लगती हैं।
2: तारा, तारा देख, तो कोई आ रहा है।
3: रणसिंह जी आए हैं।
1: रानी जी, रणसिंह का प्रणाम स्वीकार हो।
2: रणसिंह, युद्ध भूमि का क्या समाचार है?
1: महारानी जी, युद्ध किसी भी समय आरंभ हो सकता है। सामंत ने मुझे अंतिम बार आपसे कुछ सेनानी मांग लाने को कहा है। उनका शरीर रणभूमि में है पर मन आपके ही पास मंडरा रहा है।
2: रणसिंह, एक अबला के सतीत्व को संकट में देखकर भी सामंत मेरे ही बारे में सोच रहे हैं? इस हाड़ जाम की पुतली के मोह में उनकी सारी एकाग्रता नष्ट हो रही है। उनकी इस मानसिक कायरता का कारण मैं हूं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा तो फिर यही ठीक है। रणसिंह, प्रतीक्षा करो, मैं आज तुम्हें अंतिम निशानी दूंगी। ऐसी निशानी

0: कभी भी किसी भी पत्नी ने अपने पति को ना दी होगी। विजय मार तारा तारा
1: आई आई रानी जी, आपने मुझे बुलाया।
0: हाँ तारा, मेरी प्यारी सखी, तूने मेरी बहुत सेवा की है ना, आज अंतिम बार मैं तेरी सहायता चाहती हूँ।
1: ये क्या कर रही है?
0: इधर आ, इधर आ, मेरी मांग में सिंदूर भर दे, मेरे केशों को सुगंधित पुष्पों से सजा दे, पैरों में बिछिया पहना और मावर लगा। जल्दी कर तारा।
1: रानी जी मुझे छोड़कर मत जाओ।
0: पगली रोती है, क्षत्रानी होकर रोती है। शिखा ताकर, रण सिंह मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ला ला सिंदूर ला। अरे तेरे हाथ कांप रहे हैं, जरा ठीक से मांग तो भर दे। हाँ, ऐसे दर्पण ला, दर्पण इधर ला। अरे अरे वाह, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। जब मेरा विवाह हुआ था तब सब कहते थे कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, पर आज मैं कैसी लग रही हूँ ये तो तू ही बता सकती है। बता बता ना। अरे फिर रोती है। ला ला तारा, मेरे विवाह का जोड़ा और मुझे पहना दे। सुन तारा, एक बार तूने ही कहा था ना कि सामंत की विजय माल का सबसे सुंदर पुष्प मैं हूँ। हाँ, आज वही पुष्प बनने में जा रही हूँ। स्वामी के जोड़े करवोलत वक्ष पर ये मेरा शीश रूपी पुष्प खूब खिलेगा, खूब खिलेगा। बस अब बहुत विलंब हो रहा है। तारा जल्दी कर, लाकुड़पण ठहरिए रानी जी, मुझे आपके चरण स्पर्श तो कर लेने दीजिए। बस अब समय नहीं है तारा, अब समय नहीं है। मेरा भग्न शीश रण सिंह को दे देना। कहना कहना रानी ने ये विजय मार समझ के लिए दी है। विजय मार

0: तारा, तुम रो क्यों रही हो?
1: रण सिंह जी, लीजिए, हाड़ी रानी ने सामन के लिए ये विजय माल भेजी है।
0: ये कैसी विजय माल है जो इस तरह थाली में ढांक कर लाई हो?
1: आप स्वयं देख लें और सामन तक शीघ्र पहुंचा दें।
0: ये क्या, ये रानी के शीश की विजय माल? धन्य हाड़ी रानी, तुम्हारा ये बलिदान युग युग तक भारत के नरनारियों को प्रेरणा देता रहेगा। जाता हूं तारा।
2: अभी तक रण सिंह नहीं आया और इधर आलमगीर अपनी विशाल सेना के साथ आगे बढ़ा रहा है। उसे रोकने का कोई उपाय नहीं सूझता। हाड़ी रानी नस नस में बस गई है, क्या करूं?
0: सामंत, क्या मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो सकता हूं?
2: आओ आओ रण सिंह, मैं बड़ी उत्सुकता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कहो, हाड़ी रानी कुशल से तो है? मेरे लिए कुछ सेनानी दी उन्होंने?
0: हाँ सामंत, रानी जी ने आपके लिए ये विजय माल भेजी है।
2: अच्छा,
0: इसे गले में पहनकर आप झूम

0: मालूम पड़ेंगे।
1: सच?
2: और जो भी इस अनोखी विजयमाल को देखेगा वो अपने प्राणों की बाजी लगा देगा। इस विजयमाल के साथ ही हाड़ी रानी ने एक निवेदन भी किया है।
1: वो क्या?
2: कि इस युद्ध में हम सबका एक ही नारा हो और एक ही लक्ष्य हो, विजय या मृत्यु।
1: हमें सब स्वीकार है पर सेनानी तो दिखाओ।
2: आगे बढ़िए सामंत, और इस ढके हुए थाल को स्वयं खोलकर रानी की दी हुई इस निशानी से अपने वक्ष स्थल को सुशोभित कीजिए।
3: वर्सिंग! वर्सिंग, ये क्या लाए हो? हमारी भाभी का भग ऋषि, ये क्या किया तुमने? वर्सिंग,
2: मैंने नहीं, आपने ही ये किया। रानी के मोह में अंधे होकर आपने मुझे बार बार सेनानी लाने को भेजा। रानी आपकी दुविधा को पहचान गई और आप पर कोई कलंक न लगे।
3: मैं समझ गया, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं ही दोषी हूं। सचमुच मेरा पतन हो गया था, रानी ने मुझे बचा लिया।
1: हाड़ी रानी, तुम साक्षात भवानी थी, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, नहीं पहचाना। इन लहराते हुए सुंदर केशों की माला बनाकर मेरे गले में पहना दो रण से, मेरी प्रियतमा का शीश मेरी छाती पर लटकने दो, मेरे मृत शरीर को रानी के साथ एक ही चिता पर रखकर भस्म कर देना। अब मेरी आंखों पर से मोह का आवरण हट गया है, भूखे सिंह की तरह हम अपने शत्रुओं पर टूट पड़ेंगे। साथियों, आगे बढ़ो,
3: विजय हमारी है।
2: बादशाह की सेना उल्टे पैर भाग रही।
1: सच रण सिंह, हम विजयी हुए?
2: हाँ सामन, सच। मुगल बादशाह भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, शायद वो भी रणभूमि छोड़कर भाग निकला। सामन,
1: शत्रु भाग गया। जय भवानी, हम विजयी हुए, हम विजयी हुए। मैं चाहता हूँ मेरी प्रियतमा मेरी प्रतीक्षा में होगी।
3: मैं चाहता हूँ सामन, आप कहाँ दौड़े जा रहे हैं? सामन, ठहरिए, ठहरिए सामन।
4: रानी, सुना तुमने, हम विजयी होकर आ गए, हम लौट कर आ गए। आओ हमारा स्वागत करो, टीका लगाओ, आरती उतारो। रानी शीघ्र आओ। तारा, ओ तारा
5: जी। सामंत,
4: रानी जी कहां है? उनसे कहो कि हम विजयी होकर आ गए हैं, विजय माल लेकर जल्दी आए।
5: सामंत, रानी जी की विजय माल तो आपके गले में पहले से ही सुशोभित है।
1: हाँ, रानी, मेरी हाड़ी रानी, मेरी विजय माल।

विजय माल। अभी आपने रवि शर्मा लिखित ये नाटक सुना, प्रस्तुतकर्ता बी डी माथुर।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक युवा अभिनेता हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि युवा अभिनेता, लेखक, गायक और संगीतकार देवेंद्र अहिरवार। बहुत स्वागत देवेंद्र।
3: बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।
2: देवेंद्र, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी जो पहचान बनी है वो 120 बहादुर से बनी है।
3: जी जी।
2: ये फिल्म आपको कैसे मिली थी?
3: ये फिल्म के पहले एक बहुत लंबी कहानी है। इस पहचान तो ऐसे नहीं है कि इस फिल्म से बनी है, क्योंकि मैं लगातार थिएटर कर रहा था। लगभग 15-20 सालों से मैंने काम किया है। मैं काफ़ी छोटा तब से काम कर रहा हूँ और एक ऐसे बोल सकते हैं कि एक बहुत एक बड़ी ऑडियंस को जानने का मौका मिला कि
2: Correct.
3: इस नाम का कोई बंदा है कुछ काम करता है। तो ये फिल्म मुझे जैसे सबको मिलती है, क्योंकि हम बाहर के लोग हैं तो ऑडिशन से ही मिलती है। सो मैं ऐसे म्यूजिक में हूँ, मेरा गाने गाने का काम है, या मैं एक्टिंग करता हूँ या नाटक बनाता हूँ। तो कास्टिंग डायरेक्टर जो अनमोल आहूजा है, उनको मालूम था कि मैं गाना गाता हूँ। तो एक कैरेक्टर था 120 बहादुर के लिए, ऑडिशन हुआ कि एक गाना गाने वाला लड़का चाहिए। तो उन्होंने
2: अच्छा।
3: मुझे ऑडिशन लिया, पर वो उस कैरेक्टर के लिए मैं बाद में फिट नहीं बैठा, मेरा लुक नहीं जा रहा था और मेरा काम, मेरा ऑडिशन अच्छा हुआ था। तो उनको लगा कि इसको हम फिल्म में यस वाले कैरेक्टर के लिए नहीं रख सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक दूसरे कैरेक्टर के लिए टेस्ट किया जिसका नाम था बैंगन। तो उस बैंगन कैरेक्टर के लिए फिर मैं फाइनल हुआ। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, खासकर बुंदेलखंड के पूरे एरिया ने, मध्य प्रदेश के पूरे एरिया ने और पूरे देश के लोगों ने फिर बहुत ज़्यादा प्यार दिया और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ।
2: बिल्कुल, लेकिन आपकी यात्रा यहाँ से शुरू नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि सीधे चलते हैं बुंदेलखंड की तरफ।
3: जी,
2: आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका बचपन कैसा था और अपने माता पिता के बारे में बताएं।
3: जी जी। सो मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरे गाँव का नाम है पहरा।
2: क्या बात।
3: सो मैं बहुत छोटा था तब मैंने एक रेडियो पे गाना सुना था कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, इश्क और भी गहरा हुआ है। तो मैं काफी छोटा था और मैं सोचता था मेरे गांव का नाम फिल्मों में आता है। मेरे गांव के नाम पे गाने बने हुए हैं।
2: हाँ।
3: तो तभी मैंने सोचा था कि मैं, बच्चे के दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो मैं फिल्मों में जाऊंगा।
2: अरे,
3: और मुझे पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है, सच में ऐसा होने वाला है। तो एक ऐसी छोटी सी कहानी है। और मैं रेडियो लगातार सुनता था, विविध भारती लगातार सुनता था, छतरपुर आकाशवाणी मैं बहुत सुनता था, हेलो फरमाइश मैं सुनता था, रेडियो मेरे साथ ही रहता था, मेरा दोस्त हुआ करता था एक तरीके से, क्योंकि मेरे पापा भी गाना गाते थे तो उनको भी शौक था। देशर पटरिया के गाना, उर्मिला पांडे जी के गाने और भी बहुत सारे लोगों के गाने मैं सुनता था। तो ऐसा एक जीवन बीता। और मेरे घर के बाहर एक चबूतरा था, चबूतरे पे शाम को लोग अपने खेतों पे खाना खाने के पहले, डिनर करने के पहले वहाँ पे बैठते थे और फिर वो वहाँ पे कुछ गाने गाते थे 1-2 घंटे और फिर अपने खेतों पे जाते थे सोने के लिए कि जानवर उनके खेतों में ना घुस पाए। सो पूरा किसान परिवार, एक छोटी सी बस्ती मैं, आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। सो उन लोगों में मैं और मेरा भाई लखन भी, दो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे जो बैठते थे और कई दफ़ा लोग हमसे इरिटेट भी होते थे कि बच्चे बहुत ज़्यादा बैठते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते नहीं हैं। तो फिर क्या हुआ कि मंडली ने सोचा कि इस मंडली को थोड़ा बड़ा करते हैं। तो उस समय ऐसा होता था कि कोई गलत करता था तो उससे वो लगाते थे, जुर्माना लगाते।

0: थे,
1: अच्छा,
0: तो ऐसा करके होता, तो किसी ने कुछ गलत किया होगा, तो उन्होंने कुछ पैसा दिए, 8-10 हज़ार रुपये उधर से आए, तो उन्होंने सोचा इस पैसे का क्या करें, तो उन्होंने
1: हाँ
0: सोचा अब हारमोनियम ले लेते हैं।
1: अरे वाह वाह,
0: तो उन्होंने हारमोनियम ले लिया, पर हारमोनियम बजाना तो किसी को नहीं आता था, तो अब
1: ओके,
0: बड़ा असमंजस हो गया। तो रात को बैठते थे, पर हारमोनियम रहता था, बजा तो कोई नहीं था। तो
1: हाँ
0: फिर वो हमारा घर जस्ट बगल में था, तो हमारे घर में रखते थे वो हारमोनियम। तो मैं और मेरा भाई स्कूल से आके हम 2-2-3-3 घंटे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। वो ढोलक बजाता था, मैं हारमोनियम बजाता था, और ऐसे बजाते बजाते बजाते बजाते

0: से आके हम 2 2 3 3 घंटे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। वो ढोलक बजाता था, मैं हारमोनियम बजाता था, और ऐसे बजाते बजाते बजाते बजाते सडनली थोड़ा थोड़ा गाने के आसपास में दिखने लग गया लोगों को कि
1: अरे
0: एक गाने के
1: वाह।
0: आसपास से, गाने के आसपास है, कोई भी गाना गाता है तो उसके आसपास ही बजा लेता है। तो ऐसे करके मैं उस पहला जो मेरा ग्रुप था, जो मेरा पहला परफॉर्मेंस था, वो गांव के जो फोक आर्टिस्ट हैं, जो मंडली है, जिनमें मेरे
1: अपने घर के
0: पिताजी
1: ही
0: भी थे,
1: चबूतरे में हुआ।
0: चबूतरे पे ही मैंने उसको एकदम से ऐसे शुरू किया और फिर स्कूल में गाने गाने शुरू किए।
1: वाह वाह।
0: सो मैं ये बोलूँगा कि मेरे पिताजी भी किसान हैं, मेरी माँ भी किसान है, और मैं बहुत ही प्राउडली ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। जिस तरह से हम प्राउडली बोल पाते हैं ना कि हम फौजी खानदान से हैं, ऐसे जय
1: हाँ
0: जवान जय किसान वाले जो पूरी बात है, अगर हम उन साथ में बोले तो हम बहुत सारे लोगों को एक क्राइसिस रहता है कि बोलने में कि हम किसान परिवार से, तब मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं किसान परिवार का एक लड़का हूँ।
1: कितने दूर है छतरपुर से ये गांव?
0: छतरपुर से 24 किलोमीटर दूर है ये, बसारी पन्ना रोड पर पड़ता है, तो बसारी के
1: अच्छा
0: आगे है पहरा,
1: ओके।
0: बहुत ही छोटा सा गाँव है सर,
1: तो
0: बहुत ही।
1: कितनी क्लास तक वहां पढ़े आप?
0: मैं वहाँ पे पढ़ा 8वीं क्लास तक, उसके बाद मैं 12वीं तक पढ़ा बसारी में। बसारी में पढ़ते हुए एक फिल्म आई थी उस समय जिसका नाम था जीजाओ रे, बुंदेली फिल्म थी।
1: हाँ
0: उसमें एक एक्टर थे हिमालय यादव, जो उसी गांव के थे, तो वो वो बहुत पॉपुलर हो गए थे उस फिल्म से। उस फिल्म को बहुत प्यार मिला, हर घर में सीडी हुआ करती थी उस समय
1: अरे
0: तक,
1: वाह।
0: जीजाओरे की सीडी, झूमो नाचो गाओ रे, खुशियां मनाओ रे, पता नहीं आओ रे भैया जीजाओ रे, ऐसा कुछ गाना था उसका,
1: क्या
0: टाइटल
1: बात है।
0: सॉन्ग था
1: अच्छा,
0: उसका।
1: जब ये सब बातें हो रही हैं तो मुझे ये भी लग रहा है कि वो जो चबूतरे पर गाने होते थे उसमें से कोई गाना याद है,
0: उस
1: लोकगीत?
0: पे ऐसे कुछ कुछ भी गम्मतें होती थी, गाने होते थे, लाइक फागे होती थी,
1: हाँ
0: तो उसी तरह से कि कहाँ ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहाँ ले आए ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, उपटा लगत उंगरिया मेरे, कहाँ ले आए
1: उपटा लगत उंगरिया,
0: उंगरिया,
1: क्या
0: मतलब है
1: बात
0: ना,
1: है।
0: कहाँ ले आए राजा
1: क्योंकि
0: पहाड़िया में,
1: मतलब
0: लाइक
1: बुंदेलखंड,
0: कोई लव मैरिज करके किसी को डिफिकल्ट शहर में ले जाए, ये
1: हाँ
0: गाना मतलब इनडायरेक्ट रूप से वैसा है। ये
1: हाँ
0: पहाड़िया को बड़ो बड़ो चारो, ये पहाड़िया को बड़ो बड़ो चारो, लंपा लगत चुनरिया मेरे, कहाँ ले आए, कहाँ ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहाँ ले आए। सो वही है, लाइक मैं किसी लड़की को प्रॉमिस करूं कि मैं तो बम्बई रहता हूं और फिर मैं वहां छोटे से कमरे में रख दूं, तो उसी सिचुएशन को एक अलग तरीके से कवि, बुंदेली बुंदेलखंड के जो लोग हैं, जो
1: हाँ।
0: लोग कवि हैं, लोग गायक हैं, वो कैसे उसको कैप्चर करते हैं और कैसे उसको करते हैं,
1: तो
0: तो
1: मजा आ गया मुझे सुन
0: बहुत ही
1: के
0: मजा आ गया, मतलब बहुत
1: तो।
0: मजा आ गया। तो
1: हाँ
0: यही था फिर बुंदेली, फिर जब बसारी में पढ़ता था, हिमालय भैया से मिलना हुआ, हिमालय यादव जी से मिलना हुआ, उस समय बसारी में एक फेस्टिवल होने लग गया था, उसका नाम था बुंदेली उत्सव।
1: हाँ
0: तो बुंदेली उत्सव बहुत बड़ा फेस्टिवल होता, फरवरी में लगभग 1 महीना 21 दिन चलता था वो।
1: अच्छा
0: और उस समय तो क्योंकि जो वो कराते थे शंकर प्रताप सिंह बुंदेला जी, मुन्ना राजा जी कराते थे उसको, तो पूरे एमपी के फोक आर्टिस्ट सेलिब्रिटी आते थे उधर। तो वो पहली बार मैंने एक नाटक किया उस ग्रुप में जुड़ के, हिमालय भैया के ग्रुप में जुड़ के, और नाटक का नाम था ददुआ भाव दिल्ली में बर्बाद,
1: अरे
0: और
1: बाबा
0: मैं 9th क्लास
1: रे,
0: में पढ़ता था उस समय।
1: ठीक है।
0: उस नाटक में मैं रेल का डिब्बा बना था, हम ऊपर छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे हमारे,
1: हाँ
0: छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे,
1: तो
0: लाइक
1: बुंदेली में था ये?
0: बुंदेली में नाटक था। अब
1: हाँ
0: मुझे कोई भी डायलॉग याद नहीं है क्योंकि मैं एक तो मैं पहला नाटक था मेरा, तो
1: हाँ
0: उस ग्रुप से जुड़ गया और फिर मुझे बहुत मजा आया। और मैंने अभी आपसे बात भी किया, इस तरह का जो जो मुझे वो सर्कल में बैठते थे लोग, एक दूसरे की आंखों में बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, उस तरह का एक भाव मुझे लगता था। तो मुझे पता चला कि मैं शायद इस फील्ड में ही जाना चाहता हूँ।
1: वाह।
0: तो फिर ऐसे शुरू हुआ सर, मैं जल्दी से इसको वो कर लेता हूँ, फिर खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, हमारे घर के पास ही है खजुराहो, 30 किलोमीटर दूरी है। सो खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, राष्ट्रीय नाट विद्यालय NSD की एक वर्कशॉप थी, और उसको डायरेक्ट करने आए थे इश्तियाक आरिफ खान, जो कि काफ़ी
1: ओ,
0: बड़े
1: वो तो
0: एक्टर
1: पन्ना
0: हैं,
1: के ही
0: जो
1: है।
0: पन्ना के ही हैं। तो
1: हाँ
0: वो NSD से पास आउट होने के बाद वो वर्कशॉप के लिए आए थे, हमको पूछा गया कि खजुराहो में वर्कशॉप हो रही है, तो खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई खजुराहो अंग्रेज आते हैं, गोरे, 5 स्टार होटल, तो हमें उधर पहुंचना है कुछ भी करके। तो घर में बोला कि एक वर्कशॉप हो रही है, तो उनने बोला क्या क्या चाहिए पड़ेगा, तो हमने बोला कि उन्होंने बोला 2 2 किलो चावल लेके चलना है, 1 किलो दाल लेके चलनी है, थोड़ा नमक लेके चलते हैं, हल्दी मिर्ची लेके चलनी है, क्योंकि वहाँ पे 1 महीने रहना है।
1: हाँ
0: तो शिल्पग्राम में एक वर्कशॉप हो रही थी और उसमें हमने काम किया, और वो एक नाटक उन्होंने कराया इश्तियाक जी ने, इन्हें कहीं देखा है,
1: अरे
0: इन्हें कहीं
1: वाह,
0: देखा है। तो एक ऐसे कैरेक्टर जिनको हमने कहीं ना कहीं देखा है, उसका नाटक उन्होंने बनाया था और वो नाटक बहुत अच्छा बना। और

0: बहुत इम्प्रेस हुआ कि इतने छोटे से हैं, वो क्यूट से हैं, और उन्होंने इतने 20-25 लोगों को, पूरे देश के लोगों को एक नाटक में पिरो दिया और इतना अच्छा काम निकल के
1: और
0: आया।
1: इश्तियाक भाई की एक खासियत और है कि वो बहुत म्यूजिकल आदमी है।
0: हाँ, और म्यूजिकल प्ले था वो, और म्यूजिक में मेरा रुझान भी था, तो वो भी मेरे से काफी खुश थे। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी हो जाए, उनसे पूछा कि सर आपने मुझे ये करना है या मैं कहाँ सीखूँ, तो उन्होंने बोला था कि मैं NSD से पढ़ा हुआ हूँ, तुम भी NSD जाओ अगर तुम्हें करना है। तो फिर मैंने तब लिख लिया था डायरी में कि मुझे कुछ भी करके NSD पहुँचना है।
1: डायरी में लिख गया।
0: हाँ, तो मैं लिख
1: अरे
0: लिया कि
1: क्या
0: अभी
1: बात है।
0: मुझे पहुँचना है NSD। तो फिर वहाँ
1: अभी
0: से
1: आगे की कहानी थोड़ा आगे सुनाएंगे।
0: जी जी
1: यहाँ एक फिल्मी गाने की जगह बनाते हैं।
0: हाँ जी जी
1: तो जिस दौर में हम हैं, जिस दौर में आप ये सब कर रहे थे कि आप वो बड़े गांव में गए और उसके बाद खजुराहो हो गए, उस दौर का कोई गाना याद आता हो तो वो गाना यहाँ बजाया जाए।
0: एक फिल्म थी वो शोला और शबनम, वो
1: गोविंदा
0: गाना
1: की
0: गाने
1: फिल्म।
0: सुनता, तू पागल प्रेमी आवारा, दिल
1: हाँ
0: तेरी मोहब्बत का मारा, तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे। फिर म्यूजिक आता जो आप कह रहे थे ना,
1: हाँ
0: ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए
1: क्या बात
0: ओए।
1: है।
0: तो ये कुछ कुछ गाने जो ऐसे उस समय के याद है मुझे,
1: बिल्कुल, वो एक जहन में बसे
0: बहुत
1: होते
0: ही
1: हैं और ये उस दौर की याद लेके
0: जी
1: आते
0: जी
1: हैं।
0: जी हमने
1: बातचीत
0: बहुत देखा
1: करेंगे।
0: है फिल्म को,
1: वाह।
0: बहुत देखा है फिल्म को हम। मैं तो करण अर्जुन बहुत देखी, ये देखा, पता नहीं मिथुन की फिल्में देखी, टड़ी पार जैसी फिल्में देखी,
1: हाँ,
0: गुंडा, जो
1: क्या
0: भी
1: बात है।
0: सीडी पे जो भी मिलता था देखते थे, जो भी मिलता था देखते, वो हमारे लिए बेस्ट फिल्म होती थी।
1: वाह, ये
0: हाँ
1: गाना सुनते
0: जी।
1: हैं।

0: देवेंद्र, आपसे बातें हो रही हैं और हम तकरीबन 90s के जमाने में हैं,
1: जी
0: और
1: जी
0: ये वो दौर है जब आप एक नाटक करते हैं बुंदेलखंड फेस्टिवल में, और फिर इश्तियाक आरिफ खान साहब से आपका
1: मुलाकात
0: परिचय
1: होती है।
0: होता है,
1: जी
0: जो तब तक NSD में हैं
1: जी
0: और तब तक बंबई आके उन्होंने अपने जलवे नहीं दिखाए,
1: दिखाई दे।
0: और वो एक शिविर लगाते हैं,
1: जी
0: और वहां से आपको एक राह दिखती है,
1: जी जी
0: एक लड़का जो पहरा गांव का है
1: जी
0: और जिसको बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा, जिसका परिचय नहीं है, उसका परिचय इन सब चीजों से होता है, और वो अपनी डायरी में लिख लेता है कि मुझे कैसे भी करके
1: यहाँ पहुंचना है।
0: उसके आगे क्या होता है।

0: उसके आगे मैं फिर स्कूल के बाद कॉलेज में पहुंचता हूँ, तो अब मुझे तो कोई कोई लोग चाहिए कि भाई ये काम करने वाले लोग कहाँ हैं, अभी मुझे 3-4 साल और पढ़ना पड़ेगा है ना, तब जाके मैं वहाँ पे जाऊँगा। क्योंकि मैं वर्कशॉप के निकलने के बाद मैं दिल्ली आया घूमने के लिए, कि मुझे पहले वो जगह देखनी है जहाँ मुझे पढ़ना है।
1: तो मंडी हाउस चले गए।
0: मैं पहले किसी दोस्त के साथ जो किसी बस्ती में रहता था, मजदूर फैमिली का, मजदूरी करने जाते थे उनके पिता जी, तो मैं उस दोस्त के साथ दिल्ली आया, और दिल्ली में मैं ढूंढते ढांढते उस बच्चे के साथ में, और मैं खुद बच्चा हूँ अभी, मैं 9th 10th क्लास में पढ़ता हूँ, और मैं NSD की तरफ बढ़ते बढ़ते मैं वहाँ पहुँचा। उस समय मेट्रो बन रही थी, और मैंने पहली बार देखा कि वो ऐसी सीढ़ी है जिसपे पैर रखते अपने आप ऊपर पहुँचा देती है। मेरे लिए बड़ा चमत्कार था, मैं घर जाके लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ऐसी सीढ़ी बन चुकी है धरती पे कि आपको चढ़ना नहीं पड़ता, आप अपने आप ऊपर पहुँच जाओगे। और मैं ऐसे हो गया, फिर मैं NSD के गेट पर पहुँचा, और मैं NSD मैंने देखा कि ये लिखा है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, मतलब ये वो जगह है। और मैंने वहाँ से निकलते हुए लड़के लड़कियों को देखा, और वो बहुत ही फ्रेंडली हैं, किसी ने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है, कोई कुछ डायलॉग पहन रहा है, कोई कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा है, और मैं देखा कि भाई ये तो अलग दुनिया है, ये तो कमाल की दुनिया। तो मैं गेट में घुसने को हुआ, तो एक उस समय एक गार्ड हुआ करते थे, उनका नाम था धुरंधर जी,
1: अरे
0: रिटायर्ड
1: बाप रे
0: फौजी थे वो।
1: जी।
0: तो मैं घुसने लगा, उन्हें बोला क्या हुआ, मैंने बोला कि मेरे को यहाँ पढ़ना है। बोले कौन सी क्लास में पढ़ते हो, मैंने कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। तो कह रहे यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कहा अरे अब तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा यार, तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। तो उन्होंने बोला कि अरे ऐसे बहुत लोग आते हैं बोलने के लिए, पहले अभी 10 क्लास में पढ़ता है, अभी तू ग्रेजुएशन करेगा फिर तेरा मन बदल जाएगा, पता चला कुछ हो जाएगा, तू नौकरी लग जाएगी तो तू नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं नहीं सर मैं आऊँगा, मैंने बोला कि मैं आऊँगा, मुझे आना ही है इधर। तो मेरे पास उस समय नोकिया 2626 फ़ोन हुआ करता था,
1: हाँ वो छोटा
0: छोटे
1: वाला
0: वाला फ़ोन, तो उसमें 1 मिनट की रिकॉर्डिंग होती थी। तो
1: हाँ
0: मैंने उनसे बोला कि मुझे क्या क्या करके आना है,
1: वो
0: बस
1: रिकॉर्ड कर
0: इसमें
1: दो।
0: रिकॉर्ड कर दो, 1 मिनट ही मेरे पास में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मेरे पास में। तो उन्होंने मुझे बताया कि 6 नाटक चाहिए जिसमें तूने एक्टिंग की हो या बैकस्टेज किया हो, 3 बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया होना चाहिए, जिनके लेटर्स लिखा होगे, जिनमें लिखा होगा कि वो तुमको जानते हैं, तुमने उनके साथ काम किया है, और वो तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहे हैं,
1: अरे
0: तो
1: गजब।
0: तुम
1: वो
0: अनुशासित
1: उसने
0: हो,
1: 1 मिनट में सब बोल
0: सब
1: दिया।
0: बता दिया, ये करके आना पड़ेगा, तब तुम फॉर्म डाल सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग लेके, मैं रोज सुनता था मुझे ये करना है। मैं वापस आया, मैंने अपनी पढ़ाई की, कॉलेज गया, फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे कोई नाटक ही नहीं करता उस तरह से, तो मैं ही नाटक करूंगा।
1: तो
0: तो मैंने
1: कॉलेज
0: कॉलेज
1: किस
0: में,
1: शहर में था?
0: ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में महाराजा कॉलेज, तो वहां पे मैंने एक ग्रुप बना दिया, और छोटे मोटे नाटक करने लगा, यूथ फेस्टिवल में नाटक करने लगा, और पता चला कि छतरपुर में कोई इफ्टा नाम का एक संस्था है जो एक्टिव है, जो उस समय शिविन शुक्ला जी चला रहे थे, अभी भी वही संभालते हैं उसको, तो उनसे जुड़ गया। फिर उनने जो भी नाटक कराया उनमें नाटक करने लग गए, बकरी नाटक किया, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक किया,
1: बिल्कुल।
0: और भी नाटक जो भी वो कराते थे उसमें उससे जुड़ गए, और वो रिकॉर्डिंग सुनता रहता था कि ये तो करना ही भाई, अभी एक नाटक हुआ है, वो नाटक हुआ। फिर ये भी सोचता था कि जिस लेवल के हम नाटक कर रहे हैं, इस लेवल के नाटक के उसमें काउंट होंगे, क्योंकि हम तो कुछ भी कर देते हैं,
1: बिल्कुल।
0: कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कहीं बोल दिया ये इम्प्रोवाइज करके कर दिया, बुंदेली में कुछ भी बोल दिया कर दिया। तो फिर सोचा ग्रेजुएशन के दौरान कि भाई ऐसे चलेगा नहीं, भोपाल निकलना पड़ेगा,
1: अच्छा
0: कुछ भी करके अब इस जगह से निकलना पड़ेगा, अब भोपाल जाने के लिए किसी से मिलना पड़ेगा, आपको कोई जानता हो? आपको कोई भी नहीं जानता सर, एक बंदा नहीं है जिससे थिएटर या आर्ट फील्ड से जिससे भोपाल में किसी को जानता हो। तो एक उसी जो वर्कशॉप हुई थी इश्ताक जी वाली, उसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे हरीश भैया, हरीश विश्वकर्मा उनका नाम था, उन्होंने एक नंबर दिया कि हेमंत देवलेकर नाम के एक बंदे हैं, हेमंत भाई
1: हाँ, बिल्कुल
0: आप जानते होंगे, बहुत बढ़िया
1: हाँ
0: कवि हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो
1: विहान ग्रुप।
0: हम विहान ग्रुप अभी वो चलाते हैं कि एक मेंबर हैं वो, और उनका नंबर दिया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि ये तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि यही सज्जन पुरुष हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनको फ़ोन करता था, वो मैं पागल कर देता, भैया मुझे यहाँ से निकलना है, प्लीज़ मुझे निकलना है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम आ जाओ, और मैं एक डायरेक्टर हैं अलखनंदन सिन्हा जी, मैं
1: गजब।
0: अलख दादा से उनसे मिलवा
1: हाँ
0: दूंगा, पर वो तुम्हें रखेंगे नहीं रखेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मैंने एक समय ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद मैं MA के लिए मैंने अप्लाई किया था, और मैं भोपाल की बस में बैठ गया रात को, शादियों का सीजन था, बहुत बहुत ढोल बज रहे थे, बस निकल नहीं पा रही थी शहर से, और मैं बस में बैठा हूँ और मेरे घुटने कांप रहे हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक बंदे का नंबर जान है सिर्फ मेरा, उसकी शक्ल भी नहीं देखी, और वो किस तरह के होंगे, किस तरह का व्यवहार होगा उनको, और मैं उस शहर में किसी को जानता नहीं हूँ, और मैं वैसे ही जा रहा हूँ, मेरे घुटने कांप रहे हैं, और बारात की वजह से बस धीरे धीरे चल रही है, मैं सोचूं कहीं ये भगवान का संकेत तो नहीं है कि अभी मौका है उतर ले, है ना। और मैं फिर बस से नहीं उतरा, और मैं पहुंच गया उधर 5 बजे मॉर्निंग में, और मैं 5 बजे से उनको फ़ोन कर रहा हूँ, अभी 5 बजे कोई कोई फ़ोन उठाएगा,
1: बिल्कुल।
0: वो तो उठे, जब उठे 10 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि वो रोशनपुरा चौराहे पे 12 बजे मिलेंगे। मैंने कहा 12 बजे तक मैं क्या करूँगा, मैं जाके कहीं, मैंने कुछ पोहा हुआ खाया, नाश्ता वाश्ता किया, और मैं डिवाइडर पे खड़ा हुआ 2 घंटे के लिए। मैंने कहा, मैं उनको बोल दिया कि मैं बीच डिवाइडर पे खड़ा रहूंगा भैया, ऐसा ना हो कि मेरा फ़ोन बंद हो जाए या आपका फ़ोन कुछ बंद हो जाए, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं डिवाइडर पे खड़ा रहा, और फिर एक बंदा,
1: रोशनपुरा चौराहे पर।
0: हाँ एक एक बंदा शरीफ सा बंदा, एक हाथ में झोला लेके एक बंदा मेरे पास आए, और मैं

0: उनको देखा मैंने कि मेरे को भगवान आ गए मेरे लिए, ये मेरे को रास्ता दिलाएंगे, ये पहला इंसान है जो मुझे कहीं पहुंचाएगा। और वो मुझे मिले, मैंने उनको देखा और मैं बहुत इमोशनल हूँ। मैंने उनके पैर छूए, उन्होंने बोले कि पैर वैर नहीं छूते। मैंने बोले हमारे यहाँ तो पैर बड़ों के पैर छूते हैं। उन्होंने बोले नहीं नहीं पैर नहीं छूते क्योंकि लोग अजीब के होते हैं। तो उन्होंने मुझे समझाया। और कट्टू फिर वो मुझे एक डायरेक्टर के घर में ले गए, अलग दादा के घर में, और हम बैठे हुए हैं और 1 घंटा हो गया।
1: पहले हेमंत आया,
0: हेमंत दादा आए पहले, और उन्होंने
1: अच्छा
0: बोला कि मेरा तो कोई ग्रुप नहीं है भाई, मैं किसी ग्रुप में काम करता हूँ, मैं डायरेक्टर को मिलवा दूंगा। और क्योंकि वो उनका ग्रुप का नाम नटबुंदी ले, और तुम बुंदेलखंड से हो तो हो सकता है तुम्हें रख ले,
1: हाँ।
0: और तुमने बोला तुम गाने आना गाते हो तो हो सकता है तुम्हें म्यूजिक बंदों को रख ले। और मैं अतरंगीता सर, बेल बॉटम पैंट पहना हुआ है, लाल पीली कलर की शर्ट पहनी हुई है, बाल मेरे तेरे नाम जैसे हैं, बड़े
1: अरे
0: बड़े
1: बाप
0: मैंने
1: रे।
0: बाल रखे हुए थे। तो मैं वहां पहुंचा लगदा के, उधर ही रहते थे प्रोफेसर कॉलोनी में, तो उनके घर के बाहर हम बैठे हुए हैं। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया बैठे बैठे, पानी आया चाय आई, हम पी के बैठे हुए हैं। और मैं पूछूं कि क्या हुआ, तो बोले कि दादा कुछ पढ़ रहे हैं। और मैं सोचूं कि ऐसी क्या पढ़ाई है कि लोग घर में आके बैठे हैं, बंदा पढ़ ही रहा है, आ ही नहीं रहा है। फिर मुझे पता चला कि लोग इतने डिसिप्लिन होते हैं कि अपना पूरा काम करके आएंगे वो, उन्हें बैठना है तो बैठो। फिर अलग दादा एक आए, अंदर से एक बूढ़ा सा आदमी आया, और उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला कि कौन है ये। उन्होंने बोला किसको लेके आ गए, कौन है, मेरी शक्ल देख के। अरे मैंने कहा सर मैं देवेंद्र हिरवार, और मैंने बहुत नाटक किए हैं छतरपुर में, मेरा बहुत नाम है, मेरे कॉलेज में पूरे लोग जानते हैं, आपके ग्रुप को मैं बहुत बढ़िया कर दूंगा सर। वैसे
1: अरे
0: मैं
1: बाप रे।
0: बहुत कॉन्फिडेंस था मेरे को, ये मुझे ताकत लगा रहा था क्योंकि मैं डरा हुआ भी था, तो मुझे और ताकत लगा, मरता हुआ आदमी और हाथ पे
1: ज़्यादा
0: चलाता है, तो मैं हाथ पे चला रहा था। उनने बोला भाई इससे हो ही नहीं पाएगा, उनको देखे इसको भगाओ, इससे हो नहीं पाएगा। तो मैंने बोला सर ये ऑप्शन ही नहीं है, मैं जा ही नहीं सकता, मुझे कहीं जाना है और मैं उसके लिए आया हूँ, मैं जा ही नहीं सकता, लौट नहीं सकता मैं। तो फिर उन्होंने मेरी जिद देखी, उन्होंने बोला कि यार ये लड़का पता नहीं। उन्होंने बोला कि देखो ऐसे लड़के जो घर से पैसे मांगते हैं उनको हम अपने ग्रुप में रखते नहीं हैं, और हम अपने ग्रुप में तुरंत जुड़े हुए नए बंदे को पैसे देते भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे। मैं सर कुछ भी करूंगा, मैं आप मुझे बोलो मैं कुछ भी करूंगा, आपकी रिहर्सल स्पेस साफ कर दूंगा, आपको कुछ भी कर दूंगा मैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो हम तुमको रहने के लिए बस व्यवस्था कर सकते हैं, आपको बाकी चीज़ें आप खुद से देखनी पड़ेंगी। तो जिस रिपेटरी कंपनी में उनका सामान रहता था, हाथा एक जगह थी श्यामला हिल्स पे, उसमें मैं, हेमंत देवलेकर भैया और एक और जितेंद्र भाई एक थे जो कि पत्रकार थे, वो रहते थे। तो ये लोगों के साथ रहना हुआ मेरा पहली बार, और ये पढ़ने लिखने वाले लोग थे, भोपाल के साहित्य के लोग आते थे उस कमरे में, वहाँ पे एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी, और उनके साथ रहना, कविताएं सुनना, हेमंत भैया को सुनना। और फिर मैं हिम्मत करके मैंने बोला कि भैया एक बार मैंने बोला कि मैं भी लिखता हूँ। तो उनने बोला कि अच्छा, तो एक महफिल थी, मैंने हिम्मत करके बोल दिया, उन्होंने बोला कि क्या क्या लिखा, तो तुम चाहो तो पढ़ सकते हो देवेंद्र, क्योंकि बहुत ही प्यारे काइंड थे, और मुझे लगा कि सच में वो मेरे लिए भगवान जैसे ही हैं, अभी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने एक बुंदेली कविता लिखी थी जो कि मेरी एक तरीके से पहली कविता थी, और मैंने उनको फिर सुनाई, उस महफिल में सुनाई पहली बार। मैं इधर सुना दूँ आपको,
1: जरूर।
0: तो कविता बुंदेली में ही है कि दद्दा मोखा मेला जाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने,
1: वाह
0: दद्दा मोखा मेला जाने। ऊंचे ऊंचे गड़े हिड़ोरा बिच रही खूब बराई, और मेला में मिल जे है दद्दा मोखा मम्मा माई, ओ
1: वाह
0: पुत्रा और पुतनिया हल्के कक्का से लिबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने,
1: शानदार है।
0: दद्दा
1: वाह
0: मोखा
1: वाह
0: मेला जाने। घूमत घूमत जो दद्दा मोखा मौसी मिल जे है,
1: वाह
0: कईया लेके बड़े प्यार से हल्के मुन्ना के है, मोखा अपने मौसिया से गुब्बाड़ो लिबवाने,
1: वाह वाह
0: मोखा
1: वाह
0: अपने मौसिया से गुब्बाड़ो लिबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने।
1: क्या बात है।
0: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, ये उसके दोस्त हैं,
1: बिल्कुल।
0: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, जिनके संगे बड़ी रहान में खेलो गिल्ली डंडा, जो मेला ना जा पाहो उनखा आके तिनगाने,
1: वाह वाह
0: आज ते
1: वाह
0: 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने,
1: क्या
0: दद्दा
1: बात है।
0: मोखा मेला जाने।
1: वाह वाह
0: आखिरी बंद है कि दद्दा धीरे से मुस्काए, ढीले दोई बेला, और नए तंगड़िया बंठन के गए दोई घूमबे मेला, फिर मेला में फिर दद्दा ने एक गड़गड़िया ले बुआई, और कंधे पे बैठा के पूरा मेला दो घुमाई, कहते हैं देवेंद्र जे बचपन हमें भूल नहीं पाने, और आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने,
1: वाह
0: दद्दा
1: वाह
0: मुखा मेला
1: कहते
0: जाने।
1: हैं देवेंद्र।
0: के बचपन है उस समय ये बुंदेलखंड के कभी गानों में,
1: ये
0: कभी जो
1: होता
0: राइटर
1: था
0: होता था उसका नाम छाप
1: बिल्कुल।
0: बोलते थे उसे,
1: हाँ।
0: छाप है, तो छाप लगा के ही मैंने पहली कविता लिखी थी, मेरी बुंदेली कविता थी। और वहां से ही मेरा साहित्य के बारे में, शेक्सपियर पढ़ना शुरू किया, ब्रेक्ट पढ़ना शुरू किया, चेखव पढ़ना शुरू किया, मोहन राकेश पढ़ना शुरू किया, गिरीश कर्नाड पढ़ना शुरू किया, विजय तेंदुलकर पढ़ना शुरू किया, बादल सरकार पढ़ना, तो वो साहित्य से जुड़ना शुरू हुआ।
1: उस समय खर्च निकालने के लिए क्या करते थे आप?
0: खर्च तो मेरा कुछ था ही नहीं, मैं तो आटा तो मैं घर से ले गया था, और 10 रुपये का 5 रुपये का नमकीन का एक पैकेट

0: भुजिया बोले ली और रोटी बना के, और रोटी में घी लगा के, घी और ये दोनों चीज़ें घर से ले गया था, और रोल बना के उसमें नमकीन डालता था और उसको ऐसे खाता था, खर्च कुछ था ही नहीं,
1: बस
0: वहाँ
1: ये
0: से
1: खाना हो गया।
0: खाना हो गया। और वहाँ से रिहर्सल के लिए वॉक करता था, तो वॉक करके वहाँ पे जाता था, रिहर्सल करता था, टाइम से पहले पहुँचता था, तो रिहर्सल स्पेस साफ करता था, ये ड्यूटी थी मेरी, रिहर्सल स्पेस साफ करना है, चटाइयाँ बिछानी है, डायरेक्टर की कुर्सी लगानी है, पानी की बोतलें भरनी है। तो मैं और मेरे दो दोस्त और थे, एक दर्शित जो अभी कास्टिंग करता है कास्टिंग में मैं, और एक मेरा दोस्त था सिद्धार्थ पांडे, जो कि मेरा पहला दोस्त बना, कि उस तरह से भोपाल का पहला बेस्ट फ्रेंड मेरा बना। और हम तीन लोग जाते थे, हम पहले पहुंचते थे, हम सब कुछ काम करते थे, डायरेक्टर आते थे बैठते थे, बड़े बड़े लोग एक्टिंग करते थे ग्रुप में, और मैं देखता था भाई ये तो बहुत अच्छे पढ़ते हैं, मेरी भाषा का बहुत ख़राब था, एक नाटक कर रहे थे तांबे के कीड़े, और दादा मुझे और मेरी भाषा बहुत ख़राब थी, तो उसमें थे एक पत्ती एक पत्थर एक शब्द, ऐसे कुछ डायलॉग हुआ करते थे, वो भुवनेश्वर का नाटक था, एब्स्ट्रैक्ट नाटक था, और पहला नाटक ही मुझे वो करने को मिला। मैं कुछ ऐसे अजीब से नाटक करने के बाद अचानक से एक एब्स्ट्रैक्ट नाटक करने लग गया, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसमें एक डायलॉग था, ले लो कांच के बीच, तो मैं बोलता ले लो कांच के बीच, तो बोलते ले लो नहीं, वो मुझे सिखाते थे ले लो नहीं ले लो, और मैं बोलता था ले लो, और मैं बोलता था कि मैं वही तो बोलता हूँ, और मुझे इस बात पर गाली मिलती थी, और वो बोलते थे तुम बुंदेली फोड़ रहे हो। मैं कहा यार
1: हाँ
0: ये मैं समझ नहीं आता, मैं वही तो बोलता हूँ। फिर मेरे दोस्त मुझे समझाते थे, मुझे पता चला कि मेरे को भाषा पे कितना काम करना पड़ेगा। सर मुझे अच्छे से याद है कि वो दादा के साथ काम करते करते ड्रामा स्कूल खुला भोपाल में, एक MP स्कूल ऑफ ड्रामा, और मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे तो मैं पैसे मैं कमा नहीं सकता, और ग्रुप में पैसे मिलते नहीं, तो मुझे अब इस इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा जहाँ पे साल में इतने सारे लोग आएंगे नाटक कराने के लिए, वो खुला ही था। तो मैंने फिर MP स्कूल ड्रामा के लिए एग्ज़ाम दिया, पहला राउंड में मेरा सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर वर्कशॉप में मैं गया, फिर वर्कशॉप में चल का एक माहौल। सो भोपाल में मैंने देखा कि एक नाटक कर रहे थे कि मैं कैसे मैंने म्यूज़िक बनाना समझा, मैंने सीखा तो किसी नहीं है, मैंने हारमोनियम सीख लिया था, पर म्यूज़िक बनाना मैंने कैसे समझा, कि एक नाटक कर रहे थे हम लोअर डेप्थ, त्रिपुराई शर्मा मैम जो कि हम उनको डायरेक्ट करने आई थी, जो कि हमारे बीच में नहीं है, पर मैम का बहुत बड़ा योगदान है मेरे को सब चीज़ों के लिए, काफ़ी एनर्जी में भी जाने ले जाने में उनका बहुत योगदान है। तो मैम का नाटक था और हम उसको कर रहे थे, और संजय उपाध्याय सर जो कि बहुत बड़ा नाम है म्यूज़िक इंडस्ट्री में और थिएटर की इंडस्ट्री में, बहुत बड़ा नाम है, SNA अवार्डी हैं वो, और मेरे गुरु हैं, मैं उनको बहुत प्यार से उनसे सीखा है मैंने। तो एक नाटक कर रहे थे, तो उस नाटक में हम उज्जैन में, हमारी वर्कशॉप लगी हुई थी और उज्जैन में हम एक महीने के लिए वहाँ पे थे, तो सर ऐसे मेरे सामने ही गाने बना रहे थे, हारमोनियम बजाना मुझे आता था पर मैंने गाने नहीं बनाए थे, तो उन्होंने गाना बनाया मेरे सामने ही, और वो गाना मुझे ही गाना था, तो मेरे सामने बना रहे थे, क्योंकि मैम पूछती थी कि संजय क्या हुआ, तो बताते थे मैम हम कर रहे हैं। तो एक गाना उन्होंने बनाया, एक कविता थी, दिखती है आस क्यों पाक पसारे, सही में है मन क्यों क्यों रूठे किनारे, तो उन्होंने इस गाने को कंपोज किया। सर देखिए छोटी सी बात है पर उन्होंने मेरे सामने कंपोज किया, और मैं ऐसे इंस्पायर हो, इनलाइट हो गया, मुझे लगा कि भाई ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो गाना ऐसा कुछ था।

0: क्यों रूठे किनारे। तो ये गाना मुझे लगा कि भाई ये तो इतना बढ़िया काम है। तो फिर मैं आया उधर से वर्कशॉप के बाद, मैंने कुछ दिनों में कुछ 4-5 गाने बनाने की कोशिश की है और लिखने
1: क्या
0: से शुरू
1: बात
0: किए,
1: है,
0: क्योंकि मैं पढ़ता था भावे में, लाइब्रेरी में पढ़ता था, बहुत सारे कवियों को मैंने पढ़ा हुआ था। तो मैंने कुछ कुछ गाने लिखने शुरू किए,
1: कंपोज
0: और
1: करना शुरू किया या लिखना शुरू
0: लिखने
1: किया?
0: भी लिखना दिखता तो मैं कविताएं था ही, पर मैंने कंपोज किए फिर 4-5 गाने। और फिर मैंने भोपाल में आके स्कूल के बाद मैंने बोला सर से कि सर मैं एक 5-6 गानों का, 7-8 मिनट का, 15-20 मिनट का एक शो करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पर ये ऐसी परंपरा बनाओ कि हर सैटरडे को कोई एक बंदा परफॉर्म करेगा। तो मैंने कहा हाँ, तो सर उसकी शुरुआत मैं ही करता हूँ अगले।
1: रुको, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं, क्योंकि बहुत दिलचस्प दास्तान है। एक गाना सुनते हैं, उसके बाद ये दास्तान
0: हाँ
1: सुनेंगे।
0: ओके चलेगा
1: तो
0: सर।
1: बताओ यहां कौन सा गाना होना चाहिए देवेंद्र?
0: ओ साथी रे,
1: क्या बात है,
0: ओमकारा का,
1: ओंकारा का गाना
0: ओमकारा
1: है।
0: का गाना है
1: बहुत
0: कि बहुत ही
1: शानदार
0: सुंदर
1: गाना है,
0: गाना है, बहुत ही
1: बहुत शानदार
0: सुंदर
1: गाना
0: गाना है।
1: है।

0: ये गाना हमने ओंकारा फिल्म का सुना देवेंद्र,
1: जी।
0: आप बता रहे थे कि हर शनिवार को ये परंपरा शुरू करो कि कोई परफॉर्म करेगा,
1: हाँ, तो
0: इसके आगे क्या हुआ?
1: तो मैंने कुछ गाने बनाए और मैंने परफॉर्म किया, तो वो गाने परफॉर्म करने के बाद कुछ बुंदेली गाने थे, कुछ ऐसे कुछ गाने थे, और वहाँ पे अगले नाटक को डायरेक्ट करने के लिए एक डायरेक्टर आए हुए थे, उनका नाम था वीके शर्मा। तो वीके सर ने मेरे को देखा परफॉर्म करते हुए, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने मेरे शो के बाद बोला कि अगला मेरा जो शो होने वाला है उसका म्यूजिक तुम करोगे। तो वो मेरा पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उस नाटक का नाम था अपना अपना भाग। हाँ, अपना अपना भाग।

0: मैंने पहला गाना है वो ऐसा कुछ गाना था, एक सुना देता हूँ ऐसे करके। सुबह का भूला जीरो कादिर हीरो बन के लौटा है, सुबह का भूला जीरो कादिर हीरो बन के लौटा है, फिर से जन्म हुआ है उसका, फिर से मिला एक मौका है, फिर से जन्म हुआ है उसका, फिर से मिला एक मौका है, मेहनत करके भाग्य जगा ले, तुझको किसने रोका है,
1: बाबा
0: सुबह का भोला जीरो कादिर हीरो बन के लौटा है। तो एक फेलियर आदमी की कहानी थी कि वो फेल हो गया था, फिर वो कैसे हीरो बन के लौट के आया है, उसके ऊपर हमने ये नाटक, और ये पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था। उसके बाद तो ये लंबा सिलसिला है और फिर
1: म्यूजिक का सिलसिला चल पड़ा,
0: चालू हो गया। फिर उसके
1: क्या
0: बाद मैं
1: बात है।
0: पास आउट हुआ, और फिर वीके सन ने बोल दिया कि भाई तू पास आउट होके दिल्ली आ जाना मेरे ग्रुप में काम करना। तो
1: अच्छा,
0: एक ब्रिज मिल गया कि मुझे दिल्ली जाने का मौका मिल गया, क्योंकि मुझे दिल्ली ही पहुंचना है डेस्टिनेशन।
1: वो बोर्ड और
0: वो
1: वो
0: तो छूटे नहीं
1: धुरंधर
0: है, वो
1: जी याद
0: रिकॉर्डिंग
1: आ
0: तो
1: रहे।
0: छूटे नहीं है, वो
1: हाँ
0: तो मैं मुझे जाने थे स्कूल, उधर हुआ नहीं है। जिस समय मैंने एमपी स्कूल ड्रामा के लिए ऑडिशन किया था, उस समय मैंने एनएसडी का भी ऑडिशन किया था, पर
1: अच्छा।
0: एमपी स्कूल ड्रामा मेरा हो गया। और देने गया इंटरव्यू तो उन्होंने बोला कि भोपाल में खुद एक ड्रामा स्कूल खुला है, भोपाल में काम करते हो तो भोपाल में आपने नहीं दिया। मैंने बोला मैंने दिया था। तो उन्होंने क्या हुआ, मैंने कि हो गया। तो उन्होंने बोला पहले वहां पढ़ के आओ। मैंने कहा अरे यार, तो फिर मुझे पढ़ने को वहां पे मौका मिला, और फिर मैं जुलाई में पास आउट हुआ था। 4 अगस्त 2012 को मैं दिल्ली आ गया था वीके सर के ग्रुप में काम करने के लिए, और फिर मेरे को 14 में मेरा सिलेक्शन हुआ। और तो उसके बाद मैंने दिल्ली में लगातार काम किया, दिल्ली में काम
1: लेकिन
0: किया,
1: 14 में NSD में सिलेक्शन हो
0: हो
1: गया
0: गया।
1: और वहीं वो
0: और वो
1: धुरंधर जी
0: धुरंधर जी से
1: मिले
0: मिलना हुआ मेरा।
1: मिले धुरंधर जी।
0: धुरंधर जी उस समय तक थे, धुरंधर जी पर वो मुझे भूल चुके थे तब तक। मैंने बोला
1: हाँ
0: आपको याद है एक बच्चा आया था, आपने मुझे बोला था कि तेरा नहीं हो पाएगा, यार ऐसे मनगढ़ंत कहानी सुना रहे। और वो प्यार करते थे, वो थोड़ा सीनियर जैसे थे ना, जैसे बुजुर्ग
1: हाँ
0: जैसे होते हैं, तो ऐसे थे वो। क्योंकि वो ऐसा कल्चरल ग्रुप है, एक्टिविटी है, तो वहां पे गार्ड गार्ड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता जैसे
1: बिल्कुल
0: दुनिया में होता है।
1: जी।
0: तो वो ऐसे होता है कि अरे आप दादा हो, मतलब आप
1: हाँ,
0: वो
1: परिवार
0: प्यार
1: के एक
0: मिलता, परिवार के
1: सदस्य।
0: सदस्य हो, सीनियर सदस्य हो आप। तो उस तरह से तो धुरंधर जी से काफी लंबा समय तक उनसे प्यार रहा है, और फिर वो रिटायर्ड हो गए तो अब मिलना कम होता है, पर मैं दुआ करता हूँ जहां भी हो, बहुत ही अच्छे थे वो।
1: NSD ने आपकी दुनिया को कितना बदला।
0: एनएसडी में भी मैं एक्टिंग करने गया था, मैंने एक्टिंग करनी थी मुझे, और मुझे शौक था एक्टिंग करने का। और मैंने पहला एक बड़ा नाटक मैं लीड रोल किया। उसके पहले तो क्योंकि मेरी भाषा बहुत खराब थी, एमपी स्कूल ड्रामा में मैं नाटकों में रोल करता था, एक नाटक में 6 रोल करता था, और मेरे डायलॉग किसके कैसे होते थे, छोटे छोटे रोल होते थे। बंदूक किसके पास है, मैं बोलता राजगुरु के पास, मेरा डायलॉग खत्म, मेरा
1: बस
0: रोल भी खत्म मेरा रोल भी खत्म। मेरी भाषा इतनी खराब थी क्योंकि
1: अच्छा,
0: मेरे
1: लेकिन
0: को,
1: ये फिर भाषा पर काम कैसे किया, ये
0: हाँ
1: बहुत
0: मैं
1: महत्वपूर्ण
0: बता रहा
1: है।
0: हूं कि मैं ये कविता पढ़ते पढ़ते मैंने पहली बार शामिल बोलना शुरू किया था, शामिल बोलना शुरू किया पहले, क्योंकि मैं शामिल बोलता था, शेक्सपियर बोलता था, तो लोग हंसते थे। तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो मेरा बहुत बड़ा मसला है। हाँ, तो मैंने भाषा पे काम किया, दोस्तों ने मुझे हेल्प की, मुझे लगातार टोका, मुझे समझाया, और फिर मैं कॉन्शियस हो गया उसको लेके, मैं उसको लेके कॉन्शियस हो गया कि भाई अच्छा, मैं गलत बोलता था,
1: शक को सा बोल रहे हो।
0: हमेशा ही बोलता था। तो पहली बार मैंने ये कविता, जो राजेश जोशी की बहुत पॉपुलर कविता है, बाद में मैंने उसको कंपोज भी किया, जो हमारे बैंड का मंडी हाउस द बैंड, हमारा जो बैंड बैंड है उसमें गाना है ना, जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, तो शामिल मैंने पहली बार शब्द बोला था जिसमें मैंने सा को सही बोला था, शामिल बोला था। मेरे दोस्त चौंक गए थे कि भाई बोल दिया, यही तो बोलना था, इतने दिन से तुमसे यही तो बुलवाना चाह रहे थे हम। तो ये पहली बार ऐसे भाषा पे काम किया, और जब मैं पहली बार इसमें एनएसजी आया, और मैंने एक बहुत बड़ा रोल किया लोअर डेप नाटक में, दोबारा हुआ एनएसजी में, और उसमें मैंने साचिन का रोल किया, और डायरेक्ट कर रहे थे अनुरुद्ध खुटवत सर, और मेरा बड़ा नाम हुआ उस नाटक से, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई लड़का आया, और 2 2.5 घंटे के नाटक में 1.5 घंटे कम से कम स्टेज पे है, और लगातार बोलना है,
1: वाह
0: और
1: वाह
0: कैरेक्टर
1: वाह।
0: बहुत डिफिकल्ट है, कुछ भी चीज़ जो मैं नहीं करता था सब उसको करना है, मैनरिज्म पकड़ने की कोशिश की। और लंबे अंतराल के बाद वो नाटक बहुत अच्छा हुआ, पर जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में गया, और उस समय मुझे समझ में आया कि यार मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, जिन लोगों से मैं बिलोंग करता हूँ, अगर मैं एक्टिंग मैंने ले ली तो उनकी कहानियाँ कौन कहेगा। तो फिर मैंने वहाँ से अपना रुझान बदला, और मैंने डिज़ाइन एंड डायरेक्शन में अपने आप को कोर्स लिया सेकेंड ईयर से, आप स्पेशलाइजेशन करते हो तो वो लिया, और फिर मैं उस तरफ आ गया। और फिर मैंने अपनी कहानियाँ लिखनी शुरू की, अपनी बात लिखनी शुरू की, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ उस ज़मीन की सच्चाई को लिखना शुरू किया, सोसाइटी के पे क्वेश्चन करना शुरू किया। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि मैंने ठीक किया, क्योंकि मैं अभी भी एक्टिंग तो मैं कर ही लेता हूँ, मेरे को लोग प्यार करते हैं, और मेरे को पता ही है कि मैं डायरेक्शन के हिसाब से जो मैं डायरेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे इतना प्रेशर नहीं रहता क्योंकि मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो मैं एक्टिंग भी बहुत सरल तरीके से करता हूँ, लोग मेरी एक्टिंग की तारीफ भी कर देते हैं इस बहाने कि भाई तुम लोड नहीं लेते,
1: बिल्कुल
0: तुम्हारी एफर्टलेस का दिखती है।

0: ऐसा करके शुरू हुआ पूरा
1: तो
0: पूरा।
1: फिर दिल्ली में कौन से बड़े नाटक इस दौर की बात की है आपने?
0: अभी दिल्ली पहुंचा, उस दौर के बड़े नाटक हुए थे, विरासत एक नाटक किया था अनुराधा कपूर मैम ने, बहुत बड़ा लेवल पे वो नाटक किया था जिसका बहुत नाम हुआ उस समय। बंसी दादा भी नाटक करते थे,
1: बंसी कॉल,
0: बंसी कौल जी भी नाटक करते थे, एनएसडी में भी उनके साथ मैंने एक नाटक किया जिसका नाम था खेल मंडी खेल, उसका म्यूजिक मैंने बनाया।
1: मुखौटा।
0: हाँ, तो वो मूवमेंट थिएटर करते थे, लार्ज लाइव थिएटर करते थे, और वो फार्स कॉमेडी करते थे, वो कन्विक्शन के साथ कराते थे, वो बहुत बढ़िया काम था। तो उनके साथ भी काम करने का, त्रिपुराई शर्मा जी का नाम उस समय बहुत था, और बहुत उनके साथ नाटक किए हम लोगों ने, और बहुत नाटक देखे उनके, और बाहर भी दिल्ली के जो ग्रुप्स थे उनके साथ भी काफ़ी नाटक देखे। एक नाटक देखा था मैंने, वाटर स्टेशन, जो कि साउथ का नाटक था, और उस समय भारंगम होते थे, तो भारंगम से भी बहुत सारे नाटक आते थे, दुनिया के सारे नाटक, बहुत सारे नाटक उस समय
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: देखे हमने। अभिलाष पिल्लई सर के नाटक देखे थे हमने, और बहुत अलग अलग तरीके के, बहुत इंटरनेशनल लोगों से मिलना हुआ, पूरे देश के अलग अलग जगह के लोगों के, अलग अलग भाषाओं के लोगों से मिलना हुआ, और पावरफुल लड़कियों से मिलना हुआ जो कि अपनी बात बहुत स्ट्रांगली कह पाती हैं, और जो सोसाइटी में स्ट्रांगली अपनी प्रेजेंस को प्रूव करती हैं, और वो दिखाती हैं कि वो किसी से कम नहीं है, इंटेलेक्चुअली और क्रिएटिवली भी वो किसी से कम नहीं है। तो उन टीचर्स से ज़्यादा हम बैचमेट्स से सीखते हैं। तो
1: वहां
0: उन्होंने,
1: से फिर मुंबई कैसे आना हुआ?
0: मैं पास आउट हुआ 17 में, और फिर मेरे पास एक कॉल आया बहुत बड़े डायरेक्टर का, क्योंकि मैंने उस समय मेरा डिप्लोमा हुआ था, डिरेल मैंने किया था, वो नाटक उस साल का बहुत बड़ा नाटक बन गया, और वो थिएटर ओलंपिक हुआ, उसकी क्लोजिंग में हुआ, वो इतना बड़ा नाटक था, उसके 1,000 लोग देखते थे, और वो मैंने ही लिखा था, डायरेक्ट किया था, डिज़ाइन किया था, और MP छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे वो मैंने बनाया एक नाटक कि वहाँ से एक रेल की पटरी निकलती है, और वहाँ पे एक गार्ड रहता है, और वहाँ पे फाटक है, और उस बंदे ने किसी बंदे को किडनैप कर रखा है, उसकी कहानी थी पूरा, ऐसे ओपन स्पेस में करता था मैं। तो उस नाटक में एक गाना था, तो वो गाना और उसके काफ़ी गाने ऐसे पॉपुलर हुए, और वो मैंने रिकॉर्ड किया, तो दोस्तों ने मुझसे मांगे तो मैंने दे दिया किसी को, तो कुछ पत्रकार दोस्तों को भी दे दिया, उन्होंने गाना किसी डायरेक्टर को सुना दिया, कभी बड़े डायरेक्टर थे, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने उनके साथ फिर काम नहीं हो पाया, और उन्होंने मुझे कॉल किया कि तू बम्बई आ जा और मैं, हम काम करेंगे। वो बहुत बड़ा नाम था वो डायरेक्टर का, और मैं ऐसे चमक गया। रात का टाइम था, 12 बजे के आसपास, एनएसजी से पास आउट होने के पहले की बात है, कुछ दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, और मेरे पास एक कॉल आता है, कुत्ते भौंक रहे हैं, हेली रोड पर मैं चल रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ में, और एक एक कॉल आया, उन्होंने बोला कि मैं फलाना बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि मैं सर मैं समझा नहीं हूँ, उन्होंने बोला फलाना फलाना बोल रहा हूँ, सर सर वे कुत्तों की बहुत भौंकने की आवाज़ म्यूट हो गई है, मेरे दोस्त आगे निकल चुके हैं, आगे निकल चुके हैं, और मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ, कुत्ते मेरे आसपास पहुंच रहे हैं, मैं सुनाई देना बंद हो गया मुझे वो, मैंने कहा अरे हाँ सर, अरे सर मैं तो मर जाऊंगा सर, क्या हो गया सर, मैं आप बोल रहे हो क्या, हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, तो आ जाना मुंबई और अपन मिलते हैं, कुछ काम करते हैं। फिर मैं आया मुंबई, उनसे मिलना हुआ, पर वो काम नहीं बन पाया, अभी तक मैंने उनके साथ काम नहीं किया, पर उम्मीद है कि कभी ना कभी काम करेंगे, पर फिर ऐसे में मुंबई आ गया।
1: और यहां से फिर मुंबई में काम का सिलसिला शुरू हुआ।
0: हाँ, मुंबई में काम का सिलसिला तो सर ऐसे ही शुरू होता है कि 3 महीने तो मैं समंदर पे जाके बैठा, क्योंकि पहली बार समंदर देखा था और पता ही नहीं रहता था जाना किधर है, पर ये बता था कि वहाँ हर हाल में पहुँचना है, जहाँ जाने का ख्वाब देखा है, तो उसी तरफ बढ़ने की कोशिश करते थे, निकलते थे। फिर एक नाटक बना लिया, क्योंकि कोई काम नहीं देगा तो क्या करोगे, फिर मैंने एक नाटक बना लिया कांजी हाउस, जो मैंने ही लिखा था, और वो भी उसी बुंदेलखंड पृष्ठभूमि पे, वो शुरू ऐसे होता था, एक आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है, हाँ वो क्योंकि रेडियो को अंदा था, तो रेडियो पे कोई न्यूज़ चल रही है, और आज शाम को 4-7 बजे उसका मैंने अनाउंसमेंट ऐसे बनाया था, इतने बजे नाटक होने वाला है जिस इस पृष्ठभूमि पे है, ऐसे करके उसमें ये अभिनेता काम कर रहे हैं, ये उसमें इस तरह के गाने, इस तरह का म्यूज़िक है, तो कांजी हाउस में उसको बहुत प्यार मिला, मैंने उसके 25 शो किए, और वो फिर कोविड लग गया, हम पृथ्वी करने ही वाले थे, कोविड लग गया, फिर वो पूरा का पूरा बंद हो गया नाटक। फिर अभी बहुत समय बाद मैंने एक बड़ा नाटक, मतलब कम लोगों के साथ में एक बड़ा नाटक बनाने की, बड़ी बात के साथ बनाने की कोशिश की है, जिसका नाम है बहुत जोर से प्यार लगा है, जो अभी लगातार हो रहा है, और
1: उसका एक गाना सुनाओ यार।
0: उसका टाइटल सॉन्ग सुना दूंगा मैं आपको,
1: बिल्कुल।
0: सुनाता हूँ मैं आपको, उसका एक गाना है जो टाइटल सॉन्ग है, मैं एक इसकी छोटी सी अभी बता देता हूँ कि एक
1: बिल्कुल।
0: छोटा सा सेंटेंस जिस उम्र में मैं पढ़ता हूँ, छोटी उम्र में, लाइक मैं अगर 13-14 साल का हूँ, 12-13 साल का हूँ, उस समय कोई एक कोई इंसान, ऐसा इंसान जिसके होने से आप चमकते हो, जिसके होने से आपको खुशी होती है, जिसके बगल से गुजरने से आपको कोई आपका क्रश है, और वो कोई एक ऐसी बात कह दे, एक सेंटेंस ऐसा बोल दे, उस सेंटेंस का असर कितना समय रहता है, और वो सेंटेंस आपकी पूरी दुनिया कैसे बदल सकता है, वो एक सेंटेंस की कहानी है ये, एक तरीके से। अगर वो नहीं होता तो ये लड़के की जो जिंदगी है, जो गुड्डू नाम का जो कैरेक्टर है, उसकी जिंदगी कुछ और ही होती, उस घटना ने उसकी जिंदगी बदल के रख
1: बदल
0: दी,
1: दी।
0: बदल दी, उस पर ये कहानी है। हर किसी की जिंदगी में मैं

0: होता है, एक संवाद कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, भाषा में कितना पावर है, और अगर वो मीन करके, अगर वो सच में इंटेंसिटी के साथ बोला गया सेंटेंस है,
1: तो
0: संवाद
1: वो
0: है,
1: क्या कर
0: तो वो
1: सकता है?
0: क्या बदल सकता है, वो तबाही ला सकता है। तो वो कहानी है। अब ये गाना तो थोड़ा कमर्शियल गाना है क्योंकि हमारा नाटक भी कमर्शियल है, पर बात वही है कि वो फोक से शुरू होके ऐसे कमर्शियल की तरफ बढ़ता है, क्योंकि वो कैरेक्टर भी ऐसे छोटे गांव से निकल के कहाँ कहाँ पहुँचता है, उसकी कहानी है। सो गाना है, अब कंट्रोल नहीं होता, अब बर्दाश्त के बाहर है, इसको कोई रोक सके, किसमें इतना पावर है, सीने के इस पार से लेके सीने के उस पार लगा है, बहुत जोर से प्यार लगा है,
1: क्या
0: पै
1: बात
0: पै
1: है,
0: पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, पै पै पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, सीधे लड़के के हाथों में इनलीगल हथियार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है,
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: जहन की हर एक चोट थी गायब, उन होठों में होठ थे गायब, हाथ थे गायब, बात थी गायब, दुनिया की औकात थी गायब, गायब पूरा बदन हुआ था, मैं तो उसका कफन हुआ था, बचने को बस सांस बची थी, फिर भी आधी रात बची थी,
1: वाह,
0: सुबह उठा तो कान के नीचे, सुबह उठा तो कान के नीचे, गर्दन पर स्कार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है, पा पा पा पा पा, बहुत जोर से प्यार लगा है,
1: क्या बात है,
0: ये
1: क्या
0: टाइटल
1: बात
0: सॉन्ग
1: है,
0: है।
1: बढ़िया गाना है।
0: जी जी
1: कैसा
0: जी
1: रिस्पॉन्स है इस नाटक का?
0: सर, जो भी देख रहा है उनको बहुत पसंद आ रहा है, और क्योंकि म्यूजिकल है तो लोग उससे और जुड़ते जा रहे हैं, और अभी हमने लगातार 5-6 शो किए हैं, हाउसफुल शो किए हैं, और हमें भी बहुत शो करने हैं, पूरे हिंदुस्तान घूमना है, तो जो भी श्रोता जो सुन रहे हैं हमें, अगर वो चाहें तो हमें बुला सकते हैं। और दो परफॉर्मेंस हम लगातार कर रहे हैं, एक तो हमारे मंडी हाउस बैंड है जो कि ऐसे गाने हैं, वो सारे गाने ओरिजिनल गाने हैं, इतने बड़े बड़े गाने हैं जो आपने फिल्मों में भी नहीं सुने होंगे, और रोहिणी ने ऐसा बोला हुआ है, मैंने नहीं बोला हुआ है तो बहुत अच्छे गाने हैं और बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, और इसे कोम्यून ने प्रोड्यूस किया हुआ है, और हमें इसे बहुत करना है, और अभी हम कर रहे हैं, अभी आगे हमारे शो हैं, हम पृथ्वी में भी करने वाले हैं, NMACC में भी कर रहे हैं, तो अभी बहुत प्यार की उम्मीद है, अभी बहुत प्यार चाहिए सर, बहुत नाम चाहिए, क्योंकि एक ऐसी जगह से निकलना है ताकि बहुत सारे लोगों को ताकत मिले, और एक थोड़ा एग्जाम्पल बने कि हाँ कहीं से भी सपने देखे जा सकते हैं।
1: अभी वेब सीरीज आई थी बैंड वाले,
0: जी जी
1: वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? स्वानंद है उस वेब
0: जी
1: सीरीज
0: जी
1: में?
0: स्वानंद दादा हैं, और अंकुर तिवारी जी ने को डायरेक्ट किया है, को क्रिएटर है वो, और अक्षय वर्मा जी ने उसको डायरेक्ट किया, उसमें मेरे कैरेक्टर नाम है जिगी, जिगी एक कैरेक्टर है जो एक लड़की को प्यार करता था, पर वो लड़की प्रोफेसर की बेटी थी, इसलिए प्रोफेसर को पता चला कि मेरी लड़की को के पीछे पड़ा हुआ है ये, तो उस लड़के को अपने घर बुलाया राखी वाले दिन, और
1: हाँ
0: उससे राखी बनवा दी, तो वो जिगी कैरेक्टर ऐसा है कि वो राखी भाई बना हुआ बेचारा, अब
1: बेचारा।
0: वो क्या करे, उसके दिमाग में बहुत है, वो प्यार भी करता है पर उसको बहन मानता है वो, अब उसको वो पीछे घूमता रहता है 24 घंटे, वो अपनी थार से
1: हाँ
0: उसके पीछे घूमता है, बहुत मतलब लोगों ने मुझे बहुत उसके लिए प्यार इसलिए दिया क्योंकि लोग उसमें कह रहे हैं कि तुमने उसमें बिल्कुल एक्टिंग नहीं की,
1: हाँ
0: क्यों, क्योंकि मेरे को लगा कि मैं उसमें क्या ही एक्टिंग करूंगा, वो मैंने उसको समझा बस कैरेक्टर को, क्योंकि समझाने वाले लोग भी अच्छे थे, स्वानंद दादा भी थे, अंकुर जी भी थे, अक्षय वर्मा जी भी थे, और आसपास के लोग, रोमिन सर उसमें काम कर रहे थे, हमारे गुरु जी रोमिन सर
1: बिल्कुल,
0: काम, आशीष विद्यार्थी जी भी उसमें काम कर रहे हैं,
1: वाह,
0: तो काफ़ी लोग उसमें थे, तो उसमें बहुत ही अच्छा था, और उसमें मेरा एक गाना भी था, मैंने गाने बनाने के लिए पहले उससे जुड़ा था, गाना उसमें सम्मोह माया नाम का एक गाना मैंने बनाया था,
1: सुनाओ ना।
0: अच्छा वो गाना कुछ ऐसा था, वो देखो सब लूप में फंस गए, सभी लिटिल विट चूक में फंस गए, रोटी से परहेज किया है, पिज्जा बर्गर सूप में फंस गए, वो देखो सब लूप में फंस गए, प प प प प प, बुजुर्गों ने फरमाया है, प्यारे सब मोह माया है, प प प प प प प प प प प, अरे टैटू भी गुदवाया है, डूड सब मोह माया है, प प
1: वाह
0: प प प प प प प प प प प प प प प प प प प प प प, बाकी काफी ऐसे फन सॉन्ग है, आम आदमी का गाना है कि बेचारा क्या
1: बिल्कुल
0: चाय
1: बिल्कुल,
0: चढ़ा के दूध में फंस गए,
1: वाह वाह
0: पी के कहीं तो भूख में फंस गए,
1: वाह,
0: पिचकारी से खेल रहे थे, नजरों की बंदूक में फंस गए।
1: क्या सुन
0: उसके लिए ऐसे हैं मतलब।
1: वाह वाह।

0: देवेंद्र, बहुत अच्छा लगा आपसे बात
1: मेरे
0: करके,
1: को भी बहुत खुशी
0: और
1: हुई
0: सबसे
1: आपसे।
0: अच्छी बातें वो होती हैं जिनमें आगे के लिए हमेशा गुंजाइश छोड़ दी जाए।
1: जी जी जी
0: तो फिर कभी मिलेंगे
1: 100%
0: और
1: सर,
0: आगे और बहुत सारी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती
1: बहुत
0: बनाने
1: बहुत
0: के लिए।
1: शुक्रिया। मेरे रेडियो का मेरी जिंदगी में बहुत ही योगदान रहा है, और आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने बहुत सुना है विविध भारती। मैंने सुनता था आकाशवाणी का टाइम खत्म होता था, फिर बोलते थे आप विविध भारती से कनेक्ट करते हैं, कर
0: हाँ
1: दिया जा रहा है आपको, फिर वहाँ से आप सुनते थे प्रोग्राम लगातार। और
0: बिल्कुल,
1: बहुत ही एक सादगी है, एक सरलता है, एक मोहब्बत, इत्मीनान है एक रेडियो में, और मैं
0: बिल्कुल
1: बड़ा मिस करता हूँ इसको। और मैंने तो सुना ही, मैंने बताया कि वो रेडियो के गाने मेरे जहन में चलते रहते थे, बैरन होगी जिंदगी मैं कहाँ से कहूँ, जैसे गाने मैंने सुन सुन
0: क्या
1: के बड़ा
0: बात,
1: हुआ हूँ मैं। सो मेरे साथ एक बड़ी खासियत जुड़ जाती है मेरे साथ, कि मैंने थोड़ा म्यूज़िक और जो लोक है, जो फोक है, वो काफ़ी मैंने जिया है और मैंने उसको महसूस किया है। और दूसरा, मैं शहर भी रहा हूँ, तो मैंने हर तरह की शहर से होके पानी पी के आया हूँ, तो मेरे लिए ये काम कर जाता है। और रेडियो का मेरे लिए बड़ा योगदान है, कि वो
0: क्या
1: गाना
0: बात
1: नहीं
0: है,
1: सुनता, जब जब प्यार पे पहरा हुआ है तो मेरे ख्याल ही नहीं आता दिमाग में, और मैं आज आपके
0: वहां
1: साथ
0: से
1: में बैठा
0: यहां
1: हुआ
0: तक
1: था।
0: का
1: और
0: सफर है।
1: हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है अच्छे लोगों से बात करके। और आपको तो मैं पढ़ता आया हूँ, मैं आपकी किताब भी पढ़ी है शैलेंद्र के ऊपर, और मुझे स्वानंद दादा ने दी थी वो पढ़ने के लिए, तो मैं उसको भी पढ़ता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे लगातार जुड़ा रहूँगा, आपसे बात करता
0: बिल्कुल
1: रहूँगा, विविध भारती से जुड़ा रहूँगा।
0: शुक्रिया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
0: यूपी

आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: കുച്ചിനി മാറ്റാതെ
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
2: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
1: भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है।

0: दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांचकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एक्तुकोब से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एहतजान खालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Nipunika Shahid. Prime Minister Narendra Modi and US Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Tirth in New Delhi today. Mr. Modi said in a social media post that India and the US will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio shared the US perspectives on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. Secretary Rubio is on a 4-day visit to India to take part in the Quad Foreign Ministers meeting on the 26th of this month. US Secretary of State Marco Rubio today said that India is at the cornerstone of how the United States approaches the Indo-Pacific. Inaugurating the US Embassy Support Annex building in New Delhi, Mr. Rubio said this is evident in the $20 billion that Indian companies invested in the United States and in India signing up for Pax Silica.
2: Expanded commercial ties now with more than $20 billion in investments. $20 billion in investments from Indian companies in the United States. We've deepened a security partnership through military exercises in the Indo-Pacific. And of course, as part of that, we recognize that an orderly and a secure consular system is vital to solidifying this important relationship.
1: Prime Minister Narendra Modi has emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of the citizens. He made these remarks while addressing the 19th Rose Garmela through video conferencing today. The Prime Minister highlighted the world is eager to be a part of India's growth journey. In the 19th edition of Rose Garmela, more than 51,000 appointment letters to newly appointed youths in various government departments and organizations were distributed. The centre has asked Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of the next month, citing that the land was acquired for strengthening defence infrastructure. An order issued by the Land and Development Office under the Housing and Urban Affairs Ministry stated that the land is essential to fulfil urgent institutional needs, governance infrastructure and public interest project. Delhi government decided to transform all sub-registrar offices into modern technology-driven and citizen-friendly service centres. The initiative aims to eliminate delays, corruption, middlemen and unnecessary procedural hurdles in property registration services across the city. In a statement, Chief Minister Rekha Gupta said the new model registrar office will provide facilities such as digital assistant for counters, smart token systems, online appointment booking, real-time application tracking, and train staff to ensure transparent and time-bound